दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: जोकर।
1: दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर। अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: तुम
0: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

नमस्कार दोस्तों, 91.9 द ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, हाजिर हो गई है आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका, आप सभी का बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा, मीठा सा कार्यक्रम लेकर। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में, प्यारी सी सुबह, प्यारी सी मॉर्निंग के साथ। जी दोस्तों, कहते हैं जिंदगी में हमेशा वही मत करिए जिससे केवल आपको खुशी मिले, कभी कभी वो भी सोचिए जिससे किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो। किसी को पीछे धकेल कर आगे निकलना सफलता नहीं होती, बल्कि असली सफलता तो तब होती है जब आपकी ऊंचाई से किसी छोटे से इंसान को कोई दुख महसूस ना हो। क्योंकि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर बनाई गई दौलत कभी सुकून नहीं देती, और किसी के भरोसे को तोड़कर बनाया गया रिश्ता कभी सुख नहीं देता। वक्त तो मौका सबको देता है, लेकिन उसका फल हर किसी को उसकी करनी के हिसाब से मिलता है। इसलिए जितना हो सके लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कीजिए, किसी के लिए मुश्किलें पैदा मत कीजिए। क्योंकि जिंदगी तो बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन कर्मों का हिसाब लंबा जरूर होता है। जी दोस्तों, तो इन्हीं प्यारी से खूबसूरत सी बातों के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला की शुरुआत करते हैं। 9:04 हो चुके हैं दोस्तों, और अब इस सफर को आप सभी एंजॉय करने वाले हैं 11 बजे तक। तो बिल्कुल कहीं भी जो है ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत खास बातें, बहुत प्यारे प्यारे से गीत आप सभी का इंतज़ार कर रहे हैं आपके अपने रेडियो सेट के माध्यम से। तो आपको ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि अलग से समय निकालना है, बस साथ में इसको रखना ही है और अपना काम करते रहना है और साथ ही इंजॉय करते रहना है इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो आइए दोस्तों, आज यानी कि 9 अक्टूबर 2026 का दिन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा शुक्रवार का दिन है। जी दोस्तों, इसी तरह से समय निकलता जाएगा और हम खुद को महसूस करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, वहीं हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी बातें हमारे ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है। फिलहाल ये तो बातचीत का सिलसिला है दोस्तों, ये सारी बातें आप सभी तक पहुँचेंगी, लेकिन उससे पहले आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की भी। तो इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सभी के साथ।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ हमारे कार्यक्रम की शुरुआत यानी कि मनोरंजन की शुरुआत भी हो चुकी है और साथ ही कार्यक्रम का सफर भी ये शुरू हो चुका है। तो क्या क्या इस बातचीत में रहने वाला है दोस्तों, आज का कार्यक्रम किस तरह से खास रहने वाला है, तो ये जानने के लिए तो आप सभी को अभी थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना होगा। कहते हैं ना दोस्तों, धैर्य की जो ये आदत है ये हमारी ज़िंदगी में एक अलग ही अहमियत जो है वो निभाती है। यदि बच्चों में बड़ों में ये धैर्य वाली प्रवृत्ति आ जाए ना, तो दोस्तों हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये जो भी घटनाएं घटती हैं, एकदम से हाइपर होने से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं अक्सर। तो बस यहाँ पर थोड़े से पेशेंस जो है शायद बातों को संभाल सके, सिचुएशन को संभाल सके। फिलहाल आप सभी के अपनी रेडियो दोस्त रोचे का कार्यक्रम के माहौल को थोड़ा सा संभाल सकते हैं प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ और कुछ खास जानकारियों के साथ। तो दोस्तों फिलहाल आप सभी को लेकर चलते हैं मौसम की अपडेट की ओर। तो इस समय धर्मशाला का तापमान आप सभी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो इस समय का तापमान है। और इसी के साथ दोस्तों मौसम की अपडेट भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब खेती का काम जो है वो जोरों शोरों से जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में मौसम का डर जो है वो बना रहता है। तो प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव का दौर जो है वो जारी रहेगा। जी दोस्तों, 9 से 14 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है और इस दौरान उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने के आसार भी हैं। इससे पहाड़ों में तापमान और नीचे जाने के साथ ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने इस अवधि के लिए कोई भारी बारिश या भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें अपनी जो सेफ्टी, अपना ध्यान जो है वो ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों। जिस भी तरह से बारिश का ये रुख बताया गया है, तो इससे हमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और किस तरह से, और दोस्तों अभी फ़िलहाल जिस तरह से बताया गया कि हो सकता है कि ख़राब हो सकता है, तो अभी किसानों के लिए और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं बारिश हो सकती है, कहीं कहीं नहीं भी हो सकती है। आप सभी जानते हैं जैसे योल में बारिश होगी तो हो सकता है कि नीचे अगर आप जाएँ तो थोड़ा सा नीचे चले जाएं त्रियुंजा मिल कांगड़ा साइड, तो वहाँ पे बारिश नहीं भी हो सकती है। या हम धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में बारिश लगी है, हो सकता है शीला तक बारिश ना हो। तो इस तरह से ये दौर जो है वो चलता रहता है और हम सभी इसको इंजॉय भी करते हैं। और आप सभी जानते हैं मौसम में थोड़ा सा बदलाव आ ही रहा है, क्योंकि हम एंटर कर रहे हैं सर्दियों के मौसम में। तो ऐसे में भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खास करके स्वास्थ्य के प्रति। तो ज़रूर बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन फ़िलहाल प्यारे प्यारे से गीत भी बहुत सारे हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के एक और प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर। तो इंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जी दोस्तों, तो ये भी हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि हर मोड़ पे भी हम अपना दिल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दिल एक ही है ना, उसे कैसे छोड़ सकते हैं। और अगर उसे छोड़ दिया तो सोचिए जिंदगी कैसी हो जाएगी। जी दोस्तों, इस प्यारे से गीत को आप सभी ने इंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, इस समय आप सभी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ इंजॉय कर रहे हैं एक बहुत ही खास जानकारी की और रुख करते हैं दोस्तों, क्योंकि धर्मशाला में रहते हैं और धर्मशाला आप सभी जानते हैं एक बहुत ही शानदार सा घूमने वाला स्थान है। यानी कि बहुत प्यारी प्यारी सी ऐसी जगह हैं जहां हम मन को सुकून देने के लिए निकलते हैं फैमिली के साथ, या कभी अकेले भी बहुत डिप्रेशन से अगर जूझ रहे हों, बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, तो कोई ऐसी जगह जहाँ हम शांतिपूर्वक जो है अपने मन को शांत कर सकें, तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं अगर हम धर्मशाला कांगड़ा की बात करें। तो इसी से जुड़ी एक बहुत खास जानकारी दोस्तों बाणगंगा बनेर के तट पर सदियों से आस्था का केंद्र बने श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम का स्वरूप अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। जी दोस्तों, माँ चामुंडा के प्राचीन मंदिर की गरिमा और पारंपरिक पहचान को बनाए रखते हुए मंदिर और पूरे परिसर को पहले से कहीं अधिक भव्य, आकर्षक और श्रद्धालु सुविधाओं से युक्त बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण का ये कार्य पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं को पुराने मंदिर की तुलना में एक नया और भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, तो सुंदरता और भव्यता में देश के बड़े मंदिरों को मात देने जा रहा है श्री चामुंडा माँ का दरबार। सोने चांदी की नक्काशी और कारीगरों की मेहनत से मंदिर का एक एक अंश बोल उठेगा, बदलेगा शक्तिपीठ का स्वरूप। गर्भगृह से प्रवेश द्वार तक होगा कायाकल्प। जी दोस्तों, तो सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि कब ये भव्य सा नज़ारा माँ के मंदिर का देखने को मिलेगा। और अभी तो नवरात्रि भी आ रही है दोस्तों, नवरात्रों में माँ के चरणों में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इंजॉय भी करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, मानो तो सुकून हमें माँ के चरणों में भी मिल जाता है, भगवान के चरणों में भी मिल जाता है। यहाँ वहाँ हम जहाँ भटकते रहते हैं, मन साफ होना चाहिए और नीयत साफ होनी चाहिए। जी दोस्तों, और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। फिलहाल दोस्तों, ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुँचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। और आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे एक और प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी इंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला न्यू अपडेट्स के साथ और बहुत ही प्यारे प्यारे से गीतों के साथ। जी दोस्तों कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही उनके अभिनय की याद आ जाती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़, संवाद, बोलने का अंदाज और चेहरे के भाव दिल में बस जाते हैं। जी दोस्तों बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा और रंगमंच के ऐसे ही शानदार कलाकार जो कि आप सभी जानते हैं कि खामोशी कहते हैं ना दोस्तों, कुछ ऐसे हमारे लिए जब सिनेमा की बात करें तो जब हमारे सामने ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मतलब कि उनका किरदार या हंसी मजाक या उनका इस तरह से अभिनय रहता है जो हमें एकदम से ऐसा लगता है कि रियल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम खो जाते हैं उस अभिनय में, उन बातों में, उस किरदार में, ऐसा लगता है कि काश हम भी वहाँ होते। यह कितना मुश्किल होता है ना, लेकिन वही इंसान, वही शख्सियत जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाए हमें उस किरदार की याद आ जाती है, एकदम से बात जो है वो दिमाग में, अगर उनका नाम भी सामने आ जाए तो हम एकदम से उस अभिनय में पहुंच जाते हैं कि वाह कितना अच्छा रोल प्ले करते थे, कितनी अच्छी फिल्में करते थे, कितने अच्छे से सीन क्रिएट करते थे, उनका तरीका, उनका बोलने का अंदाज़, वाह क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें एकदम से हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों किन की बात कर रहे हैं आप सभी समझ ही चुके होंगे। खैर उससे पहले दोस्तों आप समझे ना समझे हम एक प्यारा सा गीत लेते हैं, शायद उससे आप समझ जाएँ।

दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में एक बार फिर से हम इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और कार्यक्रम बेहद खास, बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि बातचीत खास हो तो कार्यक्रम खास हो जाता है। दोस्तों भारतीय सिनेमा में नाना पाटेकर को ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने नायक, खलनायक और गंभीर चरित्रों से लेकर हास्य भूमिकाओं तक को अपनी खास शैली में निभाकर सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। करीब 5 दशक के फिल्मी सफर में उन्होंने ऐसे कई किरदार निभाए जो दर्शकों की स्मृतियों में लंबे समय तक बने रहे। उनके अभिनय में आक्रोश, संवेदना और सहजता का ऐसा मेल था जिसने उन्हें अपने दौर के कलाकारों में एक बेहद खास मुकाम पर पहुंचा दिया। जी दोस्तों, नाना पाटेकर का दुनिया से जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं है, बल्कि अभिनय की उस विशिष्ट परंपरा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समाप्त होना है, जिसमें उनकी आवाज़, जिसमें संवाद केवल बोले नहीं जाते बल्कि महसूस कराए जाते हैं। उनकी आवाज़, चेहरे के भाव, आँखों की बेचैनी और संवाद अदायगी ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे अलग और प्रभावशाली कलाकारों में शामिल किया। जी दोस्तों, नाना पाटेकर उर्फ विश्वनाथ पाटेकर का जन्म मुंबई में 1 जनवरी 1951 को एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता दिनकर पाटेकर चित्रकार थे और नाना ने मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से पढ़ाई की। इस दौरान वो कॉलेज में आयोजित नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। नाना पाटेकर को स्केचिंग का भी शौक था और वो अपराधियों की पहचान के लिए मुंबई पुलिस को उनके स्केच बना कर दिया करते थे। जी दोस्तों, फिल्म अंकुश की हम बात करें तो उनमें भी उनका जो है एक उससे मिला था उन्हें पहला बड़ा ब्रेक। हम ज़रूर इस पे बात करेंगे क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि जिन किरदारों को हम इंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक तरह से ये बहुत मेहनत भी करते हैं जो भी सिनेमा में जाते हैं, जो भी इस फील्ड में जाते हैं, तो सोचिए कितना मुश्किल होता है लोगों को हंसाना, लोगों को एक बिल्कुल मतलब कि उस रोल में, हम जब भी हम फिल्म्स को देखते हैं या सीरियल्स को देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि सीन्स ऐसे होते हैं कि हम एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो वहीं उस चीज़ को हम रियल में देख रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो पहले से जो है वो मतलब कि उसका प्रोडक्शन किया होता है, उसे प्लान किया होता है, उसकी स्क्रिप्टिंग की होती है। नहीं, ऐसा लगता है कि रियल चीज़ें हैं और हम एकदम से अगर रोने वाला है तो हम रो पड़ते हैं, हंसने वाला है तो हम हंसते हैं। वे इमोशंस जो है ना एक तरह से क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम होता है और इसके पीछे ढेर सारी मेहनत जो है वो छुपी होती है। तो ऐसे किरदारों का दुनिया से जाना एक बहुत बड़ा शौक होता है, खास करके उनके फैंस के लिए जो उनके पसंदीदा हैं, जिनके दिलों में ये बसते हैं और इनकी यादें बसती हैं। जी दोस्तों, तो इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कहते हैं इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन जाना भी है, और आने का तो हमें पता होता है लेकिन जाने का हमें किसी को पता नहीं कि दुनिया छोड़ के कब, कौन, किस पल में चला जाए। तो फिलहाल दोस्तों यही है ज़िंदगी का सच, और इस सच के साथ अक्सर हम

जी दोस्तों, हम बहुत ही ख़ास और बहुत ही एक गंभीर बातचीत की ओर जो है वो रुक कर रहे थे, और थोड़ा सा इस बातचीत को हम ब्रेक देते हैं, यानी कि आपको लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। उसके बाद हम फिर से इस बातचीत की ओर रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए दोस्तों, कुछ ख़ास जानकारियां आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में JBT के 72 पदों को विशेष कोटे के तहत भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन की तिथियां तय कर दी हैं। काउंसलिंग 22-23 अक्टूबर 2026 को होगी। इन पदों में दिव्यांग श्रेणी को छोड़कर अन्य विशेष योग्यजन श्रेणियों को शामिल किया गया है। दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 22 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे स्कूल शिक्षा निदेशालय कसुमटी में होगी। वहीं श्रवणबाधित, बौद्धिक दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता सहित अन्य संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 23 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छोटा शिमला में होगी। जिलावार मंडी में सबसे अधिक 15 पद हैं। बिलासपुर में 9, चंबा में 5, हमीरपुर में 4, कांगड़ा में 10, किन्नौर में 1, कुल्लू में 1, शिमला में 7, सिरमौर में 10, सोलन में 7 और ऊना में 3 पद हैं। तो इस तरह से ये पद जो है इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक और जानकारी, हिमाचल प्रदेश के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 6ठी कक्षा में प्रवेश पाने का सपना देख रहे होनहार विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी ये जानकारी है। चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की विंडो 12 अक्टूबर को बंद हो जाएगी। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने पात्र विद्यार्थियों व अभिभावकों से अपील की है कि वे जल्द निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन सुनिश्चित करें। बोर्ड द्वारा ये महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा 15 नवंबर को ली जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा में मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के वे छात्र हिस्सा ले सकते हैं जो वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही खास जानकारियां आप सभी तक पहुंचाई गई हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद 3D गुंजन धर्मशाला और अपने आसपास की अपडेट के साथ बहुत सारी खास बातें जो है आप सभी इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। और कार्यक्रम में और भी अभी बहुत खास बातें आप सभी तक पहुंचाना बाकी है, क्योंकि जब तक ये बातें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत ना की जाए, खास करके जो हमारे आसपास जो भी घटनाएँ घट रही होती हैं, तो हम जो है उनसे दूर भी रह जाते हैं या तो फिर उसके प्रति जो है वो जागरूक नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, चाहे वो बेनिफिट से रिलेटेड हो, चाहे वो अवेयरनेस से रिलेटेड हो, किसी भी बात से रिलेटेड हो, तो हमें हर बात का नॉलेज, हर बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल तो दोस्तों 9:50 हो चुके हैं और अब समय है थोड़ा सा आप सभी के लिए रुचिका की बातों से हटकर कुछ खास जानकारियों की ओर रुख करने का। जी दोस्तों, प्रादेशिक समाचारों का समय है और आइए लेकर चलते हैं आप सभी को समाचारों की ओर, उसके बाद फिर से वापस आएंगे बहुत ही खास बातचीत और प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ।

0: नमस्कार, ये अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों का किया स्वागत, कहा गिरफ्तारी के प्रावधान हटने और प्रक्रिया सरल होने से पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव। प्रदेश सरकार ने केंद्र से मांगी 5 साल तक 14% राजस्व संरक्षण की गारंटी, पर्वतीय राज्यों के लिए अलग नीति और फार्मा में टैक्स विसंगति दूर करने का भी किया आग्रह। राज्य सरकार शिमला जिला के पराला में लगाएगी एप्पल स्नेप्स प्लांट। बागवानी मंत्री ने कहा कम कीमत वाले सेब का होगा व्यावसायिक उपयोग। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा संवैधानिक पदों का सम्मान करें कांग्रेस, चुनाव आयोग के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन निंदनीय है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। राज्य सरकार ने केंद्र से अगले 5 वर्ष तक 14% सालाना राजस्व संरक्षण जारी करने की मांग उठाई है। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में आबकारी सचिव यूनुस ने कहा कि राजस्व संरक्षण की अवधि समाप्त होने के बाद इसे अचानक बंद करने के बजाय वास्तविक राजस्व निर्धारित स्तर तक पहुंचने तक जारी रखा जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार से पर्वतीय राज्यों के हितों के लिए अलग नीति और समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रियों के समूह का गठन करने का आग्रह भी किया गया। प्रदेश सरकार ने फार्मा उद्योग में कच्चे माल पर अधिक टैक्स की विसंगति को दूर करने और एपीआई पर जीएसटी दर घटाने की मांग भी की गई। प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य शिक्षकों को राहत देते हुए सरकार को उनके पक्ष में नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि प्रमोशन वाले ऊंचे पद का वेतनमान उसके निचले पद से कम या बराबर नहीं हो सकता। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने 58 स्वास्थ्य शिक्षकों की याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार की भेदभाव वाली नीति को गलत ठहराया है। अदालत ने सरकार से 30 जनवरी 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें स्वास्थ्य शिक्षकों को निचले पद के बराबर ग्रेड पे दिया गया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार इस मामले पर दोबारा विचार करें और बढ़ा हुआ वेतनमान 1 अक्टूबर 2012 से लागू माने। राज्य सरकार शिमला जिला की पराला सेब मंडी के पास एचपीएमसी के खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में एप्पल स्नेप्स बनाने के लिए नया प्लांट स्थापित करेगी। करीब 8 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में शिमला में हुई एचपीएमसी निदेशक मंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। जगत सिंह नेगी ने कहा कि ये देश का पहला सक्रिय और सत्यापित एप्पल स्नेप्स संयंत्र होगा। इससे सेब के मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलेगा और कम कीमत पाने वाले सेब का भी व्यावसायिक उपयोग हो सकेगा। नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत सेनवाला कोलावाला भूड़ सड़क गुलरिया में भारी भूस्खलन के बाद यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई है। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि इस स्थान पर बार बार भूस्खलन होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
1: इलाके के लोग इस सड़क से होते हुए कालाम इंडस्ट्रियल एरिया में और अपनी अपनी नौकरी के ऊपर जाते हैं और पूरी बरसात में लगातार ढांक के गिरने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत नुकसान हुआ। पिछले कल बिना बरसात के गुलरिया ढांक के गिरने से और एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बन गई है, किसी भी समय कोई भी व्यक्ति वहां से क्रॉस कर रहा हो उसके जीवन को खतरा बन गया। सरकार को इस मामले में तुरंत पहल करने की जरूरत है।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।

0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को संवैधानिक पदों का सम्मान करते हुए देश में अराजकता का माहौल नहीं बनाना चाहिए। मंडी में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की निंदा करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को गलतफहमी है कि अराजकता फैलाकर चुनी हुई सरकार को गिराया जा सकता है। इस बीच चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में कांग्रेस ने ऊना में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में भाजपा के पक्ष में एक दलीय व्यवस्था बनाने की किसी भी कोशिश का कांग्रेस विरोध करेगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हर मत की गरिमा और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सर्वोपरि है। चंबा जिला में ग्रामीण स्तर पर प्लास्टिक का डोर टू डोर संग्रहण किया जा रहा है, जिसके लिए प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है। इस कार्य को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के प्रावधानों के तहत अमलीजामा पहनाया जा रहा है। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले की ग्राम पंचायतों को एडॉप्ट कर यहां प्लास्टिक कचरे का प्रभावी डोर टू डोर संग्रहण सुनिश्चित किया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अहम भूमिका निभा रहा है। इस मिशन के तहत प्लास्टिक कचरे को घर से ले जाने की व्यवस्था की गई है। इसी मिशन के तहत चंबा जिला की 159 ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए एडॉप्शन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। जिला के विकास खंड भरमौर के तहत 2 माह के दौरान लगभग 102 टन प्लास्टिक कचरा सीमेंट प्लांट को भेजा जा चुका है, जिसमें मणिमेश यात्रा के दौरान एकत्रित कचरा भी शामिल है। वही विकास खंड चंबा में करीब 30 क्विंटल प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर सीमेंट प्लांट भेजा गया है। विभागी में इसके लिए 4 जोन चिन्हित किए गए हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कांगड़ा में आज से 11 अक्टूबर तक फिट कांगड़ा 2026 उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एसडीएम डॉक्टर अंजलि गर्ग ने बताया कि बाण गंगा घाट पर होने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में युवाओं को फिटनेस, योग और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।
2: के अंदर हम बहुत सी फिटनेस एक्टिविटीज को हम इसमें कर रहे हैं, जैसे कि डिवोशनल जुम्बा है, फिटनेस एक्टिविटीज जैसे कि जो HIIT वर्कआउट होता है, फिर इसके अलावा नाटी है, भंगड़ा है, योगा है, 10 को सुबह मैराथन और योगा है, फिर शाम में फिर से जुम्बा है, महा आरती है, और 11 को हमारी क्लोजिंग में हम दिव्या महा आरती और भजन क्लबिंग करवा रहे हैं। तो इसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा यूथ है वो चिट्टा से दूर हटके, ड्रग से दूर हटके फिटनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, डिवोशन में इन्वॉल्व हो।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमर उजाला के शब्द हैं, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की वर्दी के लिए बद्दी में बनेगा कपड़ा, विदेशों तक पहुंचेगी सप्लाई। पंजाब केसरी का शीर्षक है, पिक एंड चूज नीति पर हाईकोर्ट सख्त, स्वास्थ्य शिक्षकों को 2012 से बढ़ा हुआ वेतनमान देने के आदेश। दैनिक जागरण ने लिखा है, सुक्खू ने बच्चों से किया वादा निभाया, 2 स्कूल भवनों के लिए 4 करोड़ रुपए जारी। सुंदरता और भव्यता में देश के बड़े मंदिरों को मात देगा मां श्री चामुंडा का दरबार, दिव्य हिमाचल की एक खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST सुधारों का किया स्वागत, कहा गिरफ्तारी के प्रावधान हटने और प्रक्रिया सरल होने से पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव। प्रदेश सरकार ने केंद्र से मांगी 5 साल तक 14% राजस्व संरक्षण की गारंटी, पर्वतीय राज्यों के लिए अलग नीति और फार्मा में टैक्स विसंगति दूर करने का भी किया आग्रह। राज्य सरकार शिमला जिला के पराला में लगाएगी एप्पल स्नेप्स प्लांट, बागवानी मंत्री ने कहा कम कीमत वाले सेब का होगा व्यावसायिक उपयोग। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा संवैधानिक पदों का सम्मान करें कांग्रेस, चुनाव आयोग के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन निंदनीय। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों, समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी वापस आ चुके हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। जी दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी इस प्यारे से कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों, विश्वासों से भरे हुए मन में जिज्ञासा के बीज का अंकुरित हो पाना असंभव है, इसलिए पहले विश्वासों के भ्रम का टूटना आवश्यक है। इस भ्रम के टूटते ही जिज्ञासु मन जानने और अनुसंधान करने के लिए तैयार हो जाता है। मन के तैयार होने की स्थिति में समझना एक स्वतः प्रेरित प्रक्रिया बन जाती है और सीख पाना आनंद पूर्ण हो जाता है। जी दोस्तों, और इसी के बीच हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज का दिन बहुत दुखद भरा है, क्योंकि जब जिनके लिए ये जो किरदार है बहुत ही अट्रैक्टिव से और बहुत ही एक मतलब कि रोल मॉडल की तरह काम करते हैं, तो उनके लिए तो वाकई में दोस्तों है ना, ये कितना दर्द भरा समय। नाना पाटेकर जी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और उनके शब्द हैं कि 12 मन लकड़ी लगनी है, मैंने रखी है निकाल कर अपने लिए, लेकिन वो सूखी है, मुझे उसमें ही जलाना, क्योंकि गीली लकड़ी में जलाओगे तो धुआं उठेगा, आसपास यार दोस्त होंगे तो आंखों से पानी आएगा, और गलतफहमी होगी कि मेरे लिए रो रहे हैं। कम से कम आखिरी वक्त में तो गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कितने प्यारे से शब्द हैं दोस्तों, और इन शब्दों से हम सभी की इंसानियत झलक रही है। तो आज के समय का दौर, आज के समय की इंसानियत किस तरह से है, ये तो आप सभी बखूबी जानते हैं।

दोस्तों, ये क्या अनुदेशमल ऑफ ओमेगा हर्ट्स पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी इंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और दोस्तों, बातचीत के साथ साथ कुछ खास जानकारियां भी आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं, तो आइए लेकर चलते हैं एक और बहुत ही खास जानकारी की और। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और गाँव में स्थायी परिसंपत्तियां विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वीवीजी रामजी योजना के तहत अनुमेय कार्यों का दायरा बढ़ाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब योजना के तहत 375 प्रकार के कार्य किए जा सकेंगे। जी दोस्तों, ये संख्या मनरेगा के तहत अनुमेय 266 कार्यों की तुलना में करीब 41% अधिक है। नई व्यवस्था में केवल रोजगार उपलब्ध कराने के बजाय जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका और आपदा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है। जी दोस्तों, इन नई सूची के तहत 375 कार्यों को 4 प्रमुख श्रेणियों में जो है वो रखा गया है। इसमें जल सुरक्षा 128, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के 111, आजीविका से जुड़े बुनियादी ढांचे 98 तथा आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन के 38 कार्य शामिल है। तो इस तरह से इस कार्य का जो है एक तरह से प्लान किया गया है और इसको एक रूप दिया गया है 4 श्रेणियों में विभाजित करके अलग अलग तरीके से। जी दोस्तों, तो जब भी हम अपने आसपास कोई भी काम करते हैं, चाहे ये वीवीजी रामजी है, पहले मनरेगा के नाम से इसे जाना जाता था, तो सिर्फ हम फॉर्मेलिटी के तौर पे ना करें, क्योंकि हमारा ही गांव है, हमारे ही आसपास की जगह हैं। अगर हम सिर्फ अपना फ़ायदा देखकर फॉर्मेलिटी के तौर पे ये काम करेंगे तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि कुछ समय बाद दिक्कत परेशानी तो फिर हमें ही होने वाली है। तो पूरी ईमानदारी के साथ जो है हमें काम को आगे बढ़ाना चाहिए, सबसे पहले सबके साथ जो है विकास की, और उसके बाद जो है अगर आप अपने बारे में सोचना चाहें तो वो एक स्वार्थ की तरह से हो जाता है। लेकिन खैर, आज के समय में तो दोस्तों क्या ही कह सकते हैं, नज़रिया तरीका सबका अलग अलग है। लेकिन हाँ, अपना समाज है, अपना गांव है, तो अपने गांव का विकास, अपने आसपास को साफ स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और जब भी हम इस काम को कर रहे हैं तो उस लगन और जुनून के साथ करें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों, ये थी एक बहुत ही खास जानकारी और इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं फिर से एक प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर।

दोस्तों मुकेश लता मंगेशकर की आवाज़ों के साथ आप सभी एंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत पत्थर के सनम। और आज के समय में हम बात करें तो हर इंसान पत्थर की तरह ही हो गए हैं, दिल शायद है ही नहीं किसी के अंदर ऐसा लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा गलत हमारे आसपास हो रहा है दोस्तों कि हम चाहकर भी हम कहते ज़रूर हैं कि उसे हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। खैर दोस्तों कार्यक्रम में हम बातचीत के साथ साथ जो है बात कर रहे हैं नाना पाटेकर जी की। तो दोस्तों साल 1984 में रिलीज फिल्म आज की आवाज़ में बतौर अभिनेता नाना पाटेकर ने राज बब्बर के साथ काम किया। यह फिल्म पूरी तरह राज बब्बर पर केंद्रित थी, फिर भी नाना अपने किरदार को अलग अंदाज में निभाकर अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। नाना पाटेकर को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक इंचंद्रा की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। जी दोस्तों निर्देशन में भी उन्होंने अपना जो हाथ है वो आजमाया था। नाना पाटेकर केवल अभिनेता ही नहीं थे, उन्होंने निर्देशन में भी खूब जो है वो कोशिश की। वर्ष 1991 में उन्होंने फिल्म प्रहार का निर्देशन किया और साथ ही अभिनय भी किया। इस फिल्म के सबसे दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से ग्लैमर से विहीन किरदार निभाकर दर्शकों के सामने उनके अभिनय क्षमता का नया रूप रखा। इसी के साथ दोस्तों बात करें हम वेलकम में तो उदय शेट्टी बनकर कॉमेडी में छाए। 2007 में आई वेलकम में नाना पाटेकर ने गैंगस्टर उदय शेट्टी का किरदार निभाया था। इस कॉमेडी रोल को काफ़ी पसंद किया गया और वे इसके जो है स्वीकल वेलकम बैक में भी उदय शेट्टी के किरदार में नजर आए। जी दोस्तों उनके कुछ फेमस डायलॉग्स की हम बात करें तो आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, ये 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान, एक मच्छर आदमी को क्या से क्या बना देता है। खैर थोड़ा सा अलग तरह का डायलॉग है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा, अपना तो उसूल है पहले लात फिर बात उसके बाद मुलाकात, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है शोहरत है इज्जत है। जी दोस्तों तो ये इस तरह से कुछ कह सकते हैं कि उनके जाने माने से डायलॉग जो है वो आप सभी के सामने रखे। और वेलकम मूवी की हम बात कर रहे थे तो दोस्तों आइए उसी मूवी का एक गीत जो है वो आप सभी तक पहुंचाते हैं, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में इस खूबसूरत से गीत को।

सो वेलकम मूवी का ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से। जी दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ दोस्तों बहुत ही खास खास बातें जो है वो भी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश है और आप सभी तक पहुंचा भी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम फिल्मों की बात करें, मूवीज़ की हम बात करें, तो पहले के दौर में क्या होता था कि अगर एक भी मूवी कोई भी जैसे रिलीज़ होती थी या जैसे भी रिलीज़ होने के बाद जो है जब टीवी में आती थी, क्योंकि टीवी में बहुत समय के बाद जो है उसे दिखाया जाता था, तो पहले हम जो है इकट्ठे होके या तो जैसे रिलीज़ होती थी तो सिनेमा घरों में जाके जो है उसे इंजॉय करते थे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, समय होता था हम सभी के पास। और जब टीवी पे आती थी तब भी जैसे कुछ डेज होते थे ना मूवीज़ के, तो कितनी एक्साइटमेंट होती थी कि नहीं आज तो फ्राइडे है, आज तो मूवी आने वाली है, आज तो सैटरडे है, आज भी रात को 12-1 बज जाते थे एक साथ सभी को बैठे। और ख़ास करके छुट्टियों का समय चल रहा हो तब तो उसका और भी ज़्यादा इंजॉय जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं वो अपनापन वहाँ से भी बढ़ता था, क्योंकि आस पड़ोस के गाँव में कई गाँव में जो था एक टीवी होता था एक घर में, बहुत सारे घरों में टीवी नहीं होते थे, तो एक ही घर में टीवी देखने सभी ने आना, तो एक तरह से वो मेल मिलाप बढ़ता है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने की भावना वो भी पनपती है, कैसे हम खुद को एडजस्ट करें, कैसे एक दूसरे के साथ हमें सहयोग करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें ना इन चीज़ों से भी हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अब क्या कहते हैं कि बाहर जाना तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, इस भावना से देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि शुरुआती जो एक वो होती है ना, जैसे बीज को हम जब इसमें मिट्टी में लगाते हैं तो वो पहले अंकुरित होता है, किस तरह से वो एक पेड़ बन जाता है, उसे हम प्रॉपर केयर करते हैं उसकी, तभी वो पेड़ बनता है, अदरवाइज़ वो सूख भी सकता है, टूट भी सकता है, गिर भी सकता है या लगे ही ना। तो हर चीज़ के लिए एक समय, एक अटेंशन जो है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चों के लिए क्यों ना हो, वो भी ज़रूरी है। लेकिन आसपास का माहौल, आसपास का वातावरण, वो भी उन्हें समझना, जब वो बाहर नहीं निकलेंगे तो वो कैसे समझ सकेंगे कि कौन उनके लिए सही है और कौन गलत है, या तो उनके लिए सभी गलत हैं या तो उनके लिए सभी सही हैं। जिस तरह से उन्हें तैयार किया जाएगा वो तो उसी तरह से ढलेंगे, लेकिन जब वो खुद उन सिचुएशंस में जाएंगे, खुद उन चीज़ों को फेस करेंगे, डील करेंगे, तब वो एक बहुत अच्छे जो है योद्धा बनकर जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो आपका क्या सोचना है दोस्तों इस पे? आ गया ना याद पहले वाला समय, वो जो एक साथ बैठकर फिल्म्स एंजॉय करते थे, मूवीज एंजॉय करते थे, या गेम्स भी खेलनी होती थी तो एक साथ बैठकर गेम्स खेलते थे, तो वो समय शायद आज के समय में वो समय नहीं है, क्योंकि आज के समय में समय ही नहीं है हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बातों के लिए, इस मौज मस्ती के लिए। तो कहीं ना कहीं याद तो आती है, हर किसी को आती है।

0: दोस्तों उस समय की, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो समय हाथ से निकल गया वो निकल गया, वापस ला सकते हैं अपनी सोच के साथ, अपने नजरिए के साथ। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: सुर में गाना सीखिए ऐप के साथ AI पावर्ड

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से वापस आ चुके हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों, कहते हैं जब इंसान की सोच साफ हो, नियत सच्ची हो और कर्म सही हो, तो उसे हर किसी के सामने अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग क्या समझते हैं, कौन क्या कहता है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। समय और कर्म धीरे धीरे बता देते हैं कि इंसान असल में कैसा है। इसलिए अपनी नियत को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और दूसरों की राय के पीछे अपनी शांति जाने ना दें। सच्चाई को बार बार साबित नहीं करना पड़ता, वक्त खुद उसकी गवाही दे देता है।

0: बिल्कुल दोस्तों, तो मैंने तो अपने दिल की उदासी कब की तोड़ दी है, क्योंकि मैं तो आपसे 9 बजे से बातें कर रही हूँ और रुचिका से चुप रहना तो शायद बहुत ही मुश्किल बात है। तो दोस्तों एक बात सोचने वाली ना, अगर मैं चुप होगी तो आप सभी के साथ बातें कौन करेगा, आप सभी तक जानकारियाँ कौन पहुँचाएगा और ये प्यारे प्यारे से गीत कैसे पहुँचेंगे। तो बात तो करनी ही पड़ेगी और कहना भी पड़ेगा, तो कहने की बात है तो रुचिका बहुत कुछ कहती है। खैर दोस्तों, ये तो है कुछ मस्ती भरी बात है, लेकिन कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी इंजॉय कर रहे हैं और आइए इसी के साथ लेकर चलते हैं फिर से आप सभी को एक और जानकारी की। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार 9 से यानी कि आज से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाएगा। भारतीय डाक विभाग के हिमाचल प्रदेश परिमंडल की ओर से प्रदेश भर में आयोजित होने वाले इस सप्ताह की शुरुआत 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस से होगी। जी दोस्तों, इस वर्ष अभियान की थीम वन पोस्टल नेटवर्क इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ यानी कि एक डाक नेटवर्क अनंत संभावनाएं रखी गई है। सप्ताह के दौरान प्रदेश के डाक नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को आधुनिक डाक बीमा बैंकिंग और नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। हिमाचल में डाक विभाग का नेटवर्क 18 मुख्य डाकघरों, 446 से अधिक उप डाकघरों और करीब 2,329 ग्रामीण शाखा डाकघरों के माध्यम से लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहा है। जी दोस्तों, तो ये बहुत खास बात है और बहुत ही खास जानकारी जो कि आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को एक और खूबसूरत से गीत की ओर।
1: सुर में गाना। पर्सनल सिंगिंग टीचर फ्रॉम

0: उस रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी इंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम को और साथ ही इंजॉय कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन को। जी दोस्तों, जो भी दिन के दिनचर्या रहती है हमारी, वो थोड़ी सी गड़बड़ा तो गई है, लेकिन हाँ, उसे हम मेंटेन कर सकते हैं, उसे हम फिर से सही कर सकते हैं यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। जी दोस्तों, अब आप यही सोच रहे होंगे कि स्वस्थ रहने से जीवन शैली का क्या लेना देना है। बहुत ज़्यादा लेना देना है। आप सभी ने अभी जो है बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आप सभी तक इसीलिए पहुँचाई जाती हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव जो हैं वो ज़रूर कर सकें। और दोस्तों, जब भी हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं या फिर कहीं भी कुछ, कोई भी अच्छी अच्छी जगह पे जब हम निकलते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे ना एक अगर उस मतलब की सुंदरता को, उस जगह की सुंदरता को और ज़्यादा निखारती है, और ज़्यादा बढ़ाती है, तो वहाँ पर लगी कुछ प्यारी प्यारी सी चित्रकलाएँ, पेंटिंग्स जो लगी होती हैं, हम अपने घरों में भी लगाते हैं, चाहे हम कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ से हम प्यारी प्यारी सी जो तस्वीरें लेकर आते हैं और उन्हें अपनी घर की दीवारों पर लगाते हैं एक यादगार बनने के तौर पर। तो दोस्तों, उसके पीछे कभी हम ये नहीं सोचते कि कितना संघर्ष रहता है, कितनी मेहनत रहती है, और एक लगाव जो भी उस चित्रकला को बनाते हैं, उस नज़ारे को उस कैनवस पे उतारते हैं, तो उनका एक अलग ही लगाव रहता है उन चीज़ों से। और कई बार अक्सर हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ पेंटिंग्स इस तरह की होती हैं, ऐसा लगता है कि वो बस अभी हमें हमसे बात करने वाली हैं, इतनी मतलब ओरिजिनलिटी उसमें लगती है, इतनी अपनापन सा उसमें झलकता है, और इतनी बारीकियाँ जब कोई आर्टिस्ट उन चीज़ों को देखते हैं ना, उन्हें ही वो चीज़ समझ में आती है। हम तो उसको देखकर बस खुश हो जाते हैं और बस यही कि वाओ कितनी प्यारी है और कितनी सुंदर ये पेंटिंग है। तो ये इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि आज जो है आप सभी के लिए एक बहुत ही खास कार्यक्रम जो है वो 12 बजे रहने वाला है, और इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ेंगे होस्ट पिंकी जी से, और साथ ही जो हमारे खास मेहमान हैं वो हैं मिस्टर अमन सिंह गुलेरिया जी। जी दोस्तों, जिन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी सी पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई हैं, चाहे वो माँ बगलामुखी की हो, या फिर गोल्डन टेंपल की हो, या फिर हम बात करें गद्दन, बहुत प्रसिद्ध जो उनकी पेंटिंग गद्दन की है, तो उन्होंने इस तरह से अपनी पेंटिंग्स का सफ़र जो है वो तय किया है। तो वाकई दोस्तों, और उनकी पेंटिंग्स यहाँ से देश तक भी गई हैं, तो कितनी महान और कितनी अच्छी बात है ये, और खुद को गर्व महसूस होता है जब हम कुछ बेहतर कर पाते हैं, कुछ ऐसा कर पाते हैं जिससे कि हमारी एक अलग पहचान उभर कर सामने आए। तो हर किसी को ये कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कोई भी काम जो है वो हमारे लिए छोटा बड़ा नहीं होता है, बस एक कहते हैं ना कि अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं, हम ये कर सकते हैं, वाकई में कर सकते हैं, बस विश्वास को टूटने नहीं देना है। फिलहाल आप सभी इंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आप सभी का विश्वास है रुचिका से कि प्यारे प्यारे से गीत आप सभी तक पहुंचेंगे, तो उसे भी कैसे टूटने दे सकते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं फिर से आप सभी को एक और प्यारे से गीत की और, तो इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: ना करवट बदलूंगा, ना

291.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बातचीत के सिलसिले को आगे की ओर बढ़ाते हैं और धीरे धीरे समय जो है आप सभी से दूर जाने के और करीब जाता जा रहा है। लेकिन जाने से पहले एक बेहद खास जो जानकारी है दोस्तों आप सभी तक जरूर पहुंचाना चाहूंगी। अगर आप भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के बाद चालान कटने पर उसे अनदेखा कर देते हैं या भुगतान करने में आनाकानी करते हैं तो अब आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी दोस्तों, मोटर वाहन नियमों में सख्त बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत यदि आपने तय समय के भीतर अपनी ई चालान का भुगतान नहीं किया तो आपके वाहन की RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपका ड्राइविंग लाइसेंस पोर्टल पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब तक आप जुर्माना नहीं भरेंगे आपके वाहन से जुड़ा कोई भी काम नहीं हो सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय मोटरयान तीसरा संशोधन नियम 2026 लागू किया गया है। जी दोस्तों, तो ये बहुत खास जानकारी है आप सभी के लिए जो भी चालान भरने में आनाकानी कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि अभी नहीं भरना है, नहीं भरते हैं तो 45 दिन में अगर चालान नहीं भरा तो आपकी RC हो सकती है ब्लॉक यानी कि रजिस्ट्रेशन, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और आप यहाँ वहाँ आ जा नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, अब आप सभी जानते हैं कि चालान ऑनलाइन जैसे कैमरे में कट जाते हैं सीधे ही, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले सामने दिखेंगे तभी कटेंगे। जो कैमरे रोड में लगे होते हैं वो चालान कट के आपके फ़ोन में उसका SMS आ जाता है। तो सावधान रहें और चालान

कटने से, ऐसे काम ही ना करें जिससे कि आपका चालान कटे। तो कई बार गलती से हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें करेंगे तो शायद मुश्किलें हमारे लिए ही बढ़ जाएंगी। फिलहाल दोस्तों आइए चलते चलते सुनाते हैं आप सभी को कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों इसी गीत के साथ अब समय है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी ने एंजॉय किया होगा, ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा एंजॉय। तो बिल्कुल इसी के साथ दोस्तों दीजिए अनुमति, फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंतजार करिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे? माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं।

0: तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत गैर लज्जा है। चलिए हमारे साथ
1: डॉक्टर।
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: हाँ, और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूमकर आती हैं। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रहे हैं। आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया सर, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना है सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: मैं एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे हैं ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने है क्या?

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओ, अक्सर कहते हैं कि जिंदगी बड़ी बेरंग है और कोई इसमें रंग भर दे, तो आज श्रोताओं और हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों की जिंदगी में रंग भरने के लिए हमारे स्टूडियो पे एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं। वो ना सिर्फ जिंदगी में रंग भरते हैं बल्कि कैनवस पे इतनी सुंदर सुंदर आकर्षक तस्वीरें पेंटिंग्स बनाते हैं जिनका ना सिर्फ हिमाचल में बल्कि देश विदेश में नाम है। और वही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं, अमन सिंह गुलेरिया जी। तो आइए आपकी बातचीत मुलाकात करवाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। अमन गुलेरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: जयदेव, थैंक यू वेरी मच अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अमन की जो पेंटिंग की जर्नी है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अमन आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ पे हुई?
1: जी, मैं नगरोटा सूर्या के समीप एक कटोरा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और जो मेरी शुरुआती दौर पे जो शिक्षा है, 12th क्लास जो मैंने कही थी वो कांगड़ा में जीएवी स्कूल है, वहां से मैंने की। उसके बाद ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकॉम इंजीनियर हूँ मैं, जिसकी मैंने डिग्री पंजाब में रोपड़ है
0: जी।
1: रोपड़ से IIT बड्डल इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से मैंने प्राप्त की थी
0: जी। तो अमन, एक स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, अचानक से ही ये कला और कलाकारी की दुनिया में किस तरह से कदम रखा आपने?
1: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे लिए भी। 2014 में जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद जो मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी दिल्ली में एज ए इन ए टाटा डोकोमो कंपनी में एज ए ट्रांसमिशन इंजीनियर
0: जी।
1: 2014 टिल 2015 के एंड तक मैं उसी जॉब में रहा। एज ऑफ नाउ आर्ट का मेरे में कोई दिलचस्पी नहीं थी उस दौरान। लेकिन जैसे ही 2016 का वक्त शुरू हुआ, मैंने एक अपनी जॉब स्विच की और 99acres.com कंपनी है
0: जी,
1: मैं उसमें गया। एंड कंपनी में काम करते वक्त कुछ वक्त के लिए मैं अपने घर वापस आया नगरोटा सूर्या में
0: जी।
1: एक हफ्ते के लिए या दो हफ्ते के लिए मैं आया था। उस दौरान कुछ घर पे साफ सफाई का काम चल रहा था। साफ सफाई करते वक्त एक पुराना संदूक मिला जो मेरे ग्रैंडफादर नाना जी अपने नाना जी के बारे में मैं बताऊं तो वो एक टैंक कमांडर थे इंडियन आर्मी में
0: जी।
1: ड्यूरिंग 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान वो शहीद हो गए थे। ही वॉज अ पेंटर टू, आर्टिस्ट थे। एंड उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स जो लगभग 60 साल पुरानी है वो मेरे परिवार में थी, जिसमें से दो पेंटिंग्स मेरे परिवार में है, दो पेंटिंग्स मेरी मासी जी के और दो पेंटिंग्स मेरी दूसरी मासी जी के परिवार में थी
0: जी।
1: तो वो दो पेंटिंग्स उस दौरान सफाई करते वक्त वो सामने आई थी। उनके बारे में मैं बचपन से देखता आ रहा था, सुनता आ रहा था, लेकिन कभी इतना महसूस नहीं हुआ कि ये पेंटिंग्स मुझसे कुछ कह रही हैं। उन पेंटिंग्स की गहराई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन पेंटिंग से मैं अपने नाना जी से बात कर सकता हूँ। नाना जी को शहीद 1971 में हुए थे और मेरा जन्म लगभग 21 साल बाद 1992 में हुआ था। तो वो पेंटिंग्स से मैं अपने गुजरे हुए वक्त अपने नाना जी को महसूस कर सकता था। तो वही दो पेंटिंग्स मेरी प्रेरणा बनी। वापिस अपने जॉब प्रोफाइल में 99acres में गया एंड सैटरडे संडेज ऑफ होते थे, 5 days वीक था वहां पे। एंड अपनी तरफ से मैंने प्रैक्टिस शुरुआत की, जिसे कहते हैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, खुद से ही अभ्यास करके कला साधना को अपने अंदर समेटना, वो मैंने शुरुआत किया। तब मेरी उम्र लगभग 23-24 साल थी
0: जी।
1: और उसके बाद 9 महीने काम करने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ दूंगा एंड आई विल कम बैक टू माय होम टाउन नगरोटा सूर्या और अपना ही कुछ करूंगा, लेकिन साथ में अपनी इस कला साधना को भी
0: जारी
1: रखूंगा। उस दौरान क्या होता है कि मेरी मदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नियुक्त थे और उनकी जो पोस्टिंग थी वो शिमला हो गई
0: जी।
1: और अब मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि आप अभी घर पे हो तो आप मेरे साथ चलो, मेरा साथ दीजिए। वहां पे कुछ 6 महीने का वक्त था उनको पूरा करना था सर्विस में
0: जी।
1: जब मैं शिमला पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि मॉल रोड पे एक गेटी थिएटर है
0: जी।
1: वहां पे एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, वहां पे अलग अलग प्रदेश से कलाकार वहां पे अपनी पेंटिंग्स वहां पे प्रदर्शित की हुई थी। तो मैं उनसे काफी प्रेरित हुआ। प्रेरणा तो वो दो पेंटिंग्स थी जो मेरे नाना जी ने बनाई थी
0: जी।
1: लेकिन मुझे आभास हुआ कि मेरी जर्नी यही है और इसी में मुझे आगे बढ़ना है। तो उन 6 महीनों में मैं एकदम फ्री था, कुछ करने को इतना था नहीं, तो मैंने खुद से ही प्रैक्टिस कर करके उन 6 महीने के दौरान पेंटिंग्स को खुद से सीखा। तो सबसे पहले जो मैंने सीखा वो सीखा था स्केचिंग, पेंसिल शेडिंग, चारकोल। जब उसमें मुझे समझ आ गई देन उसके बाद जो रंगों की दुनिया आती है, ऑयल कलर्स, एक्रीलिक कलर्स, उस पे मैंने हाथ अपना निखारना शुरू किया। तो इस तरीके से एक इंजीनियर की जॉब से मैं आर्टिस्ट की लाइफ में मेरा ट्रांजिशन हुआ।

0: आपको 2016 से अब तक अपने अंदर क्या चेंज लगता है? उस दौरान आपने ब्रश को सिर्फ उठाया, चलाना शुरू किया, और अब तक जो 10 साल का ये अंतराल हम कह सकते हैं, इसमें एक ऐसा कलाकार उभर के सामने आया है जो 10 साल वाले अमन को बिल्कुल ही पीछे छोड़ आया है, तो ये जर्नी कैसी रही आपकी? इसमें क्या कुछ आपने सहा और कैसे सीखा, कैसे आगे बढ़े?
1: तो 2016 और 17 के दौरान जब मैं शिमला में था, उस वक्त जब भी कोई एक एग्जांपल लेते हैं एक स्टूडेंट के तौर,

0: किसी प्रदर्शनी की जरूरत नहीं पड़ती
1: जी।
0: तो ऐसे ही कुछ हुआ। फिर जो तीसरा वर्जन था इस पेंटिंग का, वो भी जो देरा में पेंटिंग लगी है होटल में वहीं से मुझे आया। तो वो SDM ऑफिस जो हाँ देरा का है, वहां पे SDM सर ने मुझसे वो पेंटिंग बनवाई थी अपने लिए। तो ये इस पेंटिंग्स की कहानी थी।
1: ठीक है अमन, आपने हिमाचल में रह करके हिमाचली जो हमारे देव स्थल हैं या देवियां हैं उनकी तो पेंटिंग्स बनाई, साथ में हमने गद्दन का भी जिक्र किया। आपकी जो विदेशों में, पहले तो आप विदेशों की ये जर्नी बताएं कि कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं जहां पे आपकी पेंटिंग्स सेल हो चुकी हैं, और वहां पे जो पेंटिंग्स बिकती हैं जाती हैं वो उनका टाइटल या विषय क्या रहता है?
0: जी सबसे पहले जब मुझे मौका मिला कंट्री कनाडा में अपनी पेंटिंग्स बेचने का मिला था, वहाँ पे जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो है सिख पंजाबी
1: जी।
0: तो उस तरीके से एक पर्सन है कनाडा से, उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया था कि हमें आपकी पेंटिंग्स बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए गोल्डन टेम्पल
1: जी,
0: अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, उनकी पेंटिंग बना के तैयार करें अलग अलग रूपों में। तो उसमें मैंने 5 पेंटिंग्स थी मेरी फर्स्ट टाइम जो मैंने ये तैयार की थी, और सबसे बड़ा चैलेंज था कि पेंटिंग्स को भेजना। तो जो हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस सर्विसेज होता है, इंटरनेशनल मीडियम होता है, तो उसमें हम पेंटिंग्स को रोल करके एक रोल्ड वुडन केस में डाल के हम भेज सकते हैं, बहुत ईजी रहता है। तो इस तरीके से ये मेरी फर्स्ट 5 पेंटिंग्स कंट्री कनाडा में गई, वहां पे सेल हुई थी। सेकंड जो मुझे ऑर्डर आया फेसबुक के थ्रू ही ये सारा सिलसिला चल रहा था उस टाइम पे, ये आया था कीनिया से, कीनिया के नैरोबी शहर से एक मयूर शाह जो बड़ोदरा गुजरात से ही NRI हैं, उनका मुझे मैसेज आया कि अमन सर वी वॉन्ट पेंटिंग एंड हमारी ये इच्छा है और हम अपने लिविंग रूम में लगाना चाहते हैं। तब उन्होंने कॉल के दौरान बातचीत हुई एंड आई अंडरस्टूड देयर रिक्वायरमेंट कि किस तरह की पेंटिंग वो चाहते हैं, एंड मैंने उन्हें वो बना के दी एंड द सेम चैनल पेंटिंग वेंट टू कीनिया नैरोबी। थर्ड इसके बाद जो मेरी पेंटिंग गई थी जर्मनी से, एक मुझे मैसेज आया था फेसबुक पे, उनका ये था वो जलंधर के रहने वाले थे बेसिकली, बट जर्मनी में भी
1: सेटल
0: थे, एंड दे सेड कि हमें एक पेंटिंग चाहिए आपसे, और पेंटिंग का टाइटल लाहौर दरबार। लाहौर दरबार की पेंटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये पेंटिंग आज से बहुत सालों पहले, लगभग अगर मैं सही से नहीं बता सकता बट 100-150 साल पुरानी पेंटिंग है, जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह जैसे शेर ए पंजाब कहा जाता है
1: जी,
0: उनके ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई थी बाय अ फॉरनर आर्टिस्ट अगस्तिन शफियात। तो ये पेंटिंग उनको चाहिए थी जिसका रेप्लिका, ओरिजिनल वर्जन का रेप्लिका उन्होंने मुझे बनाने के लिए कहा था। ये पेंटिंग बहुत चैलेंजिंग थी, इसमें मोर देन 200 कैरेक्टर्स थे, 200 से ज्यादा लोग थे इसमें, और उस पेंटिंग को उसी अंदाज में बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था जब कोई कलाकार फर्स्ट टाइम इसको बना रहा था
1: जी।
0: इस पेंटिंग को बनाने में लगभग मुझे 2 से 2.5 महीने लग गए थे, बिकॉज सबसे पहले उसे स्टडी करना जरूरी था, क्या कलर रेंज है वहां पे, क्या कंपोजिशन है वो समझना भी बहुत जरूरी था
1: जी।
0: तो 2.5 महीने के बाद जो जिन्होंने मुझे पेंटिंग का ऑर्डर दिया था, दे केम पर्सनली टू माई होम आर्ट गैलरी नगरोटा सूर्या
1: जी,
0: और उन्होंने पर्सनली आके वो पेंटिंग रिसीव की थी। तो ये सिलसिला था मेरी इंटरनेशनल कंट्रीज में जहाँ जहाँ पे ये पेंटिंग्स सेल हुई हैं
1: जी
0: और पहुंची हैं।
1: अब कार्यक्रम में एक और गीत सुनेंगे अमन, आपकी पसंद का।
0: जरूर जरूर,
1: तो बताएं अगर आप।
0: मूवी नेम रॉकस्टार, तुम हो
1: पास मेरे। तो श्रोताओं कार्यक्रम में आगे एक और गीत एंजॉय करते हैं, और आप बने हुए हैं रेडियो कुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए।

0: श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद फिर से वापसी करते हैं, अपने खास मेहमान से बातचीत करते हैं। और आज रंगों की दुनिया में हम गए हुए हैं, किस तरह से रंगों के साथ अपनी जिंदगी में रंग भरे जाते हैं, इसी विषय पे हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं अमन सिंह गुलेरिया जी। तो अमन, आपकी जो पेंटिंग्स है वो विदेशों तक भी बिकी हैं, और तब से लेकर अब तक आपका जो काम है उसमें भी काफी निखार आया है, वो आपका परिणाम दिखा ही रहा है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो पेंटिंग्स आप ज्यादातर बनाते हैं उनमें कौन सी पेंटिंग्स, उसमें ऑयल कलर या वाटर कलर, एक्रेलिक, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, या किन पेंटिंग्स में ये डिफरेंस करते हैं आप रंगों का?
1: जी, अगर बात करेंगे, अगर मुझे नेचर की पेंटिंग बनानी है तो मैं मोस्टली एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि एक्रेलिक कलर्स की विशेषता ये है कि वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू ऑयल पेंटिंग, जिन्हें एक लेयर पे अगर काम किया जाए तो सूखने के लिए एक हफ्ता भी लग सकता है, उससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है, तभी उस पर सेकेंड लेयर पे काम हो सकता है। जबकि एक्रेलिक पेंटिंग की बात की जाए तो उस पेंटिंग को आप एक या दो घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन जो ऑयल पेंटिंग में स्मूथनेस आती है, अच्छे से हम स्मूथ कर सकते हैं चीजों को, ब्लेंडिंग कर सकते हैं, वो एक्रेलिक में होना इतना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है बट बहुत कोशिश के बाद ये चीज की जा सकती है। तो नेचर पेंटिंग्स अगर बनानी हो तो मैं एक्रेलिक में बनाता हूँ, अगर ह्यूमन पोर्ट्रेट मुझे बनाना हो तो एक्रेलिक प्लस ऑयल मिक्स करके मैं यूज करता हूँ फेसेस ह्यूमन एनाटॉमी को बनाने के लिए।
0: जी, रंगों के बारे में कहते हैं अमन की हर रंग की कोई कहानी होती है। जैसे मान लिया कि गुलाबी रंग, तो गुलाबी रंग आजकल सीधा सीधा लड़कियों से जोड़ा जाता है कि पिंक कलर लड़कियों को पसंद होता है, उसी तरह से नीले रंग को लड़कों के साथ जोड़ा जाता है, एक तरह से एक मेल फीमेल का वर्जन बना दिया है। हर रंग की कोई ना कोई कहानी होती है। आपकी जिंदगी में ऐसे वो कौन से रंग हैं जो आपको लगता है कि दिस इज समथिंग, मतलब जो आपको मूड को बूस्ट करते हैं, या उन रंगों से आपका कोई खास रिश्ता है?
1: ऐसा पहले नहीं था लेकिन अब जरूर है।
0: जी,
1: अब तक माता बगला मुखी जी की पेंटिंग को बनाते हुए 28 बार मैं ओरिजिनल प्रतिमाएं बना चुका हूँ। उसमें यूज होने वाला जो कलर है कैडमियम येलो, पीतांबरी, ये कलर बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है, और इस कलर की जो चमक है वो मुझ पे भी आती है और देखने वाले के ऊपर भी पड़ती है। तो ये रंग जो है कैडमियम येलो, ये मुझे मेरे जीवन में बहुत प्रभावित और उजाला मेरी जिंदगी में लेकर आया है, मैं इस चीज को मानता हूँ।
0: जी, और अब आपसे जानना चाहेंगे अमन की आजकल के जो कलाकार हैं, या यूं कहें कि उभरते हुए बच्चे हैं, वो भी पेंटिंग की ओर हैं, उनको आप किस तरह से मार्गदर्शन करना चाहेंगे? कि अगर अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई काम पकड़ते हैं फिर लगता है कि जैसे निराशा हाथ लगी तो छोड़ देते हैं, तो आपकी जर्नी से भी प्रभावित हो सकते हैं, और आप किस तरह से उनका मार्गदर्शन करेंगे?
1: बहुत बेहतर सवाल है। मैं आने वाली जनरेशन जो आज है उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सच है, आर्ट लाइफ, आर्टिस्ट की लाइफ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड वेरी हैव द गट्स, वेरी फ्यू हैव द गट्स टू फुलफिल और अचीव इट।
0: जी,
1: सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है, अगर आप किसी काम को शुरू करते हो तो खत्म करके छोड़ो।
0: जी,
1: मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने शुरुआती दौर पे अपना परिचय देते वक्त कहा था कि मैंने शिमला में एक एग्जीबिशन लगाई और मुझे सिर्फ निराशा हाथ मिली।
0: जी,
1: ये बहुत जाहिर सी बात है कि इसके बाद कोई भी नया कलाकार मायूस हो जाए और काम करना छोड़ दे और किसी और
0: फील्ड में
1: काम करना शुरू कर दे, और ये बहुत होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अपने जीवन के एटलीस्ट 10 साल पेंटिंग्स को दो, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल आप दोगे कुछ नहीं होगा। नए स्टूडेंट्स, जो नए कलाकार ये सोचते हैं कि आज हमने ये पेंटिंग बना ली, फेसबुक पेज की फोटो डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं और ये अपने आप सेल हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला और ऐसा कहीं नहीं होता। हर पेंटिंग को सेल करने के पीछे एक कहानी होती है और एक तरीका होता है, जो मैंने मेरे साथ जो काम किया मैं वो बता चुका था। तो कोशिश करते रहें और अपनी शुरुआती दौर पे कोई और फाइनेंशियली सोर्स भी करना जरूरी है, मैं ये समझता हूँ। सिर्फ कला के ऊपर निर्भर रह पाना एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। जब आप 8-10 साल मार्केट में काम कर लेते हैं
0: जी,
1: जो पेंटिंग्स आपने दी हैं ऑलरेडी वही आपको आगे काम देने शुरू कर देते हैं, जैसे कि आज मेरे केस में है
0: जी।
1: जो जो पेंटिंग्स मेरी बनाई हुई है जहां जहां पे हैं वहीं से ही मुझे अपने आप
0: काम
1: मिल रहा है और मैं उसमें संतुष्ट हूँ आज के टाइम पे
0: जी।
1: काम अच्छा है बुरा है मेरे लिए काम है, जैसा भी है मैं करता हूँ उस चीज को। तो ये 10 साल का समय है, जो भी नया स्टूडेंट आर्टिस्ट बनना चाहता है ये कवर कर लेगा तो ही कैन गो एंड बिकम अ आर्टिस्ट इन फ्यूचर फॉर श्योर।
0: अमन, अब बातचीत को हम थोड़ा सा विराम देंगे, एक और आपकी पसंद का गीत सुनेंगे और सुनवाएंगे अपने श्रोताओं को।
1: ओके, मूवी नेम आशिकी 2
0: जी,
1: तू ही ये मुझको बता दे।
0: श्रोताओं एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और बने रहिए यूं ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद फिर से वापस आते हैं और अमन जो कि एक पेंटिंग आर्टिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत की उनके जीवन के बारे में हमने। और अमन से अब अंतिम सवाल इस बातचीत के दौरान ये करेंगे कि अब तक का जो आपका सफर था वो आपने हमारे साथ श्रोताओं के साथ दर्शकों के साथ साझा किया, और इस पेंटिंग की ही आपकी जर्नी में आगे क्या आपने सोचा है कि क्या क्या करना है, वो कौन कौन से पड़ाव है जो आपने जीतने हैं अभी?
1: जी, आज मैं 34 वर्ष का हूँ
0: जी,
1: और अभी तक मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं हाईली प्रोफेशनल कैटेगरी में काम करता हूँ। इसके बाद जो पड़ाव है वो मास्टर क्लास है
0: जी।
1: मास्टर क्लास कैटेगरी में जाने के लिए मुझे लगता है मुझे कहीं ना कहीं 5 से 10 साल और अपनी वर्क करना होगा, अपनी आर्ट को निखारना होगा, और तब जाके मैं उस टियर में काम कर सकता हूँ। अभी हिमाचल में बहुत सारी कहानियां हैं जिनके ऊपर पेंटिंग्स नहीं हो चुकी है। मेरी कोशिश है उन कहानियों को दोबारा से जीवित करने की, जिसमें से एक कहानी है जो मेरे दिमाग में और दिलों में बहुत प्रभावित करती है, जो कि 1905 में आया होगा
0: भूकंप।
1: उसकी बीती बयान आज तक मैंने देखी नहीं, और मैं चाहता हूँ कि पेंटिंग के थ्रू उन कहानियों को दोबारा से सामने लाया जाए
0: जी।
1: तो इनके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, अपने हिमाचल के कल्चर पे काम करना चाहता हूँ, और कोशिश यही है कि अपने हिमाचल को एक फिर से एक नई पहचान कला के रूप में दिलाई जाए
0: जी।
1: यही मेरा आने वाले समय में मेरा लक्ष्य है और यही मैं हासिल करना चाहता हूँ
0: जी। हम आपको यही आपके लिए यही दुआ करेंगे अमन, कि आपका ये सपना जरूर पूरा हो और आप अपने रंगों से, अपने तुलिका से जो भी कल्पना करें या जो भी बनाना चाहें वो बहुत ही सुंदर, आकर्षक और मनमोहक बनाएं, यही हमारी आपके लिए दुआ है। आप हमारे साथ समय निकाल करके स्टूडियो में बातचीत के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: थैंक यू।

0: नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दिल्ली में दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर भारी यातायात की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ TVK के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूर संचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत के संकल्प और देश तथा उसके नागरिकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 756 अंक बढ़कर 72,350 पर, जबकि निफ्टी 253 अंक बढ़कर 22,485 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे? माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर। अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो,
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं। फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो व्यंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशी दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूंगा सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे? माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती हैं। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं। फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

0: नमस्ते नमस्कार। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने मैं शशि हाजिर हुई यो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक ताशो तो माटी दी महक कार्यक्रम कुथी न कुथी तो हाँ जो अपनी मिट्टी करने जोड़ी कर रख दे अपनी संस्कृति करने जोड़ी कर रख दे अपने जेड़ा लोग गीतन तिना करने भी एक कार्यक्रम तो हम जो जोड़ी के रखता है। इसी करने इस कार्यक्रम दी जेड़ा खासियत है सही है कि तो हाँ अपनी लोकल लैंग्वेज जेड़े से गलबात करी सकते पहाड़ी च इस कार्यक्रम च गलबात जेड़े से जरूर करी सकते कने अपने मने दी जेड़ा गल है से जरूर रखी सकते। तो तुम गलबात अहाँ शुरू करी थी है कने आज ने दिने दी अगर अहाँ गल करिए 9 अक्टूबर 2026 दी तो इसी कने अहाँ 9 अक्टूबर आज कने दिने च शुक्रवार दिने च जेड़े से पहुँची हो न कने दिनांक जेड़े से तुह तक पहुँचाई थी है कने समय 2:02 जेड़ा न से कार्यक्रम च समय हुई है कने श्रोता जरूर कॉल करना भी शुरू हुई हो न कने मैसेज करना भी शुरू हुई हो न तो तिना दी जेड़ा कॉल है सभी अहाँ जरूर लैनी है कने इसी कने जेड़ा मैसेज फरमाइश है सभी तिना तक अहाँ पहुँचानी है नंबर तुह तक पहुँचाइन दी है नंबर तुह सारे ही नोट करा नंबर है 7011817091 नंबर तुह तक पहुँचाई ते है कने बाकी जेड़ा काम मैं से तुहंदा है इसी कने जेड़ा मेरा काम मैं से मैं कर दी है कने तो हम भी जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफ़र करने जुड़िया क्योंकि इंतज़ार जेड़े से तो जो रहा है कि कालू दिया 2 बजते न कने कालू दिया तो सारे इस कार्यक्रम करने जुड़ते न तो इंतज़ार जेड़े से बिल्कुल ख़त्म है कने अहाँ भी कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से करने गीत करने कने तो हम भी गीत संगीत करने कने इस कार्यक्रम च अहाँ कने जुड़ी भी सकते ते इसी कने करदे न अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से एक प्यारे दे गीत कने क्योंकि जलवे गीत तुहां तक पहुँचदे न तो कुथी ना कुथी जेड़ा रौनक आला माहौल है से तुहां तक पुज जांदा है तो जरूर अहाँ इस कार्यक्रम च रौनक आला जेड़ा माहौल है से तुहां तक पहुँचाना है कने तुहां भी इंजॉय करना है पर श्रोता जेड़ा न से कॉल करा दे पहले तिना कने गलबात करी लैन दे न से कुथू ते बोला दे न कने तिना दा नां की है। हेलो
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न।
1: हां जी हां जी ठीक ठाक जी।
0: जी तुहां कुथू ते बोला दे कने तुहांदा नां की है जी।
1: मेरा नाम प्रवीण कल मैं दिल्ली ते बोला दा।
0: जी प्रवीण जी दिल्ली ते बोला दे। जी तो प्रवीण जी दिल्ली आ रहे क्या हाल चाल है मौसम कदी है उस साइड जी जी मौसम ठीक है
1: मौसम ठीक है थोड़ी ठंड हुई संजा प्यागा
0: जी अच्छा ठंड जेड़े से हुई संजा प्यागा
1: हां जी हां जी
0: जी जी ता काम कार कदी है कि चले तो हुंदा
1: बस सब बढ़िया बस एक फरमाइश है कुछ भी सेवे गाना सुनना चाहते ना
0: जी जरूर जी
1: हां जी जिंदगी सोनी है मतलब शिकवे की करिए
0: जी गाना तो हां सुनने है जिंदगी सोनी है
1: हां जी हां जी
0: जी जी जिंदगी ता सोनी है पर कई बार होंदा ना कि आहा अपनी जिंदगी जो उस तरीके ने सोना नहीं बनाई पांदे ना जी
1: हाँ जी हाँ जी ये तो
0: जी क्योंकि अहाँ तो सिर्फ समय दी और भागा दे क्योंकि अहाँ तो हमेशा ही बोलते ना कि यहाँ समय नहीं है ना जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: कहना उस तरीके ने अहाँ ना अपने जो समय दे पांदे ना ना खुद वास्ते समय निकाली पांदे ना
1: हाँ जी ये तो आजकल सबसे बड़ी गल है कि बंदे ना टाइम ही नहीं है वास्ते ना खुद वास्ते ना भी और ना वास्ते भी
0: जी क्योंकि हाँ अपने आस पास भी दिख दे ना दिखा हाँ ट्रैवल कर दे ना तो इतनी ज्यादा बस च भीड़ होंदी है फिर भी हाँ खामोश होंदे ना जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: फिर अगर हाँ सोचने पर मजबूर हो जाए तो हाँ ये सोच दे कि इतनी ज्यादा भीड़ है फिर भी हाँ कुथी ना कुथी खामोश है ना जी जी, तो सही खामोशी कई बार अहां जो कुछ सोचने पर मजबूर करिंदी ना जी।
1: जी,
0: तो परवीन जी तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचान दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: धन्यवाद जी।
0: तो श्रोताओं तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दोष शशि कन्ने। इसी कन्ने जेड़ा बाकी श्रोता ने सभी जरूर कॉल पर कॉल करा देना, अगले श्रोता अहां कन्ने जुड़ चुके ने, कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्ते
0: जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना? हां जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहा ठीक ठाक है ना?
2: हां जी वधिया वधिया
0: जी। तो तुहा अपना नाम दसी दिया कने कुथु दे रहने वाले न जरूर दसी दिया जी।
2: मेरा नाम मेघनाथ है कने मैं दाड़ी दा रहने वाला
0: जी। मेघनाथ जी दाड़ी दे रहने वाले न?
2: हां जी हां जी
0: जी। तो मेघनाथ जी आज कना जेड़ा दिन ने से तुहांदा कदिया की चलया, क्या कामकार तुहा छेड़या? मौसम दा तो कोई भरोसा नहीं है ना जी। जी अच्छा इना तैयार होई धान पूरे जी? जी दाने जेड़ा ने से पक्की हो जी? जी चलो मौसम दी और भी नजर दौड़ानी है कने काम भी मौसम दे अनुसार वैसे तो चलते रहते ना जी, मौसम दा तो कोई भरोसा नहीं है ना जी। जी
2: बिल्कुल
0: काम तो चल ही रहने ना जी। जी तो मेघना जी आज कना जेड़ा खास दिन अहां बना देना से खास तौर पर बना देना विश्व डाक दिवस ना जी। जी ता से चिट्ठियां वाला जमाना ता चली है ना जी, फिर ते आ जो
2: याद कर ली
0: जी जी
2: आज कल भी
0: जी आजकल ता मोबाइल फोन की
2: चिट्ठियां वाला इंतजार कर रहे है ना
0: जी। जी जी
2: आजकल ता मोबाइल है, जानू मर्जी को कर लिया पूरी भी कर लिया
0: जी। मोबाइल फोन दा फायदा भी बड़ा है पर नुकसान भी बड़ा है ना जी। समझाना भी जरूरी है, कई बार डांट भी जरूरी होंदी क्योंकि
2: हां एक बार बड़ी मुझे टोक टकाई करना ठीक है, सारा काम है।
0: जालू ते बच्चे छोटे ना तालू ते तिना जो बोलना शुरू करी दिया, चाहे तिना जो अच्छा लग गया चाहे बुरा लग गया, क्योंकि माता पिता तालू ते बोलना शुरू करी दे ना ता कुथी ना कुथी बच्चा जेड़ा है से उस गल पर ध्यान जरूर दिंदा है ना जी।
2: कुछ माता पिता लेने ना
0: जी जी
2: मतलब गलत शिक्षा बच्चे ने ना नहीं टोक टकाई करी थी
0: जी,
2: करते ना साड़े ऊपर ही एक्शन लेना तो साड़े बच्चे ने कर टोक
0: जी। जी चलो
2: ऐसा बच्चा तो पूरी खराब हो जाएगा
0: जी। जी जी कने बच्चे ना भी
2: माफ नो बड़ी गलती
0: है जी।
2: बच्चे मतलब कभी भी कोई चीज नहीं देना चाहिए
0: जी। जी
2: हाँ जी
0: बच्चे जो उस तरीके ने समझा कि बच्चा भी समझिया कने पेरेंट्स भी समझिया ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ जी जी तो मेघना जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनने कुंदे फरमाइश है तो हंदी
2: आगे या बंदे तेरे काम करे मुकने नहीं
0: जी। बंदे काम तेरे मुकने नहीं जरूर जरूर तो हंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचांदे जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद बहुत
0: जी। तो श्रोताओं जिंदगी सोहनी है कि तुहां तक पहुंचा देन परवीन जी तक से रहने वाले न दिल्ली ते, तो तुहां सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोताओं तो सारे ही सुनिया एक गीत फरमाइश इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता ने सेहा कन्ने जुड़ चुके हैं कर दिन तिना कन्ने गल बात।
1: हेलो सुषमा जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, स्वागत है
1: जी। ठीक ठाक मैडम जी।
0: जी हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो हाँ ठीक
1: मैं जी तो हाँ डॉक्टर दी सुनिया बढ़िया बढ़िया मुबारक
0: जी। तो हाँ जो भी जी सुनने वास्ते जी जी ता राकेश जी क्या काम कार तो हाँ छेड़े
1: बस क्या लाना मैडम जी बस यहाँ रखा मैं तो मैडम चार पांच दिन हो जी मैं फोन कर दे कर डाक दी सी बड़ी बड़ी मुबारक दें मैं कल क्या जमाना होता है मैडम चिट्ठी होनी है इंतजार करना है ना फिर मन को लाभ होता है ना
0: जी जी
1: हूं तो बस सीधे फोन हाय हेलो हाय ना हेलो हेलो चिट्ठिया मार मैडम जी छे छे दिन आने में इंतजार होता चिट्ठी होनी मन की ना बड़ी खुशी
0: मैडम
1: जी मैडम जी मैं तो कोई 35 साल पुराने चिट्ठिया रखी तैयार के बंद हुई है ना रखी संभाल की फाइल है मैडम जी
0: जी अच्छा हल्ली भी रखी
1: हां रखी है मैडम जी
0: जी चलो अच्छी गल है जी पुरानिया यादा कुछ ना कुछ
1: पुरानी यादा से मैडम जी संजोड़ के रखना चाहिए है ना
0: जी
1: हां पुराना चीज है मैडम कभी गुआना चाहिए कर रही है ना
0: जी जी
1: हां तो क्या फैशन चली पिया ना फिर इसे करी दे दियो कड़ी दिया इसी भी कड़ी दिया इसी भी कड़ी दिया मैं बोलता मारूंगा कड़ी दिया पुराने कर रखी है
0: जी नहीं नहीं नहीं ऐसा
1: हाँ ठीक है मैडम जी
0: जी
1: ठीक ठाक है मैडम जी
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
1: मैं तो मैडम जी सवेरे ना लाइन दा बस थोड़ा सुंदरकांड वगैरह क्या मजा आंदा मैडम जी
0: जी
1: बहुत ही बढ़िया नहीं है दिल शांत हो जाता मैडम जी
0: पहाड़ी
1: लोग गीत मैडम जी बड़े पसंद पे तो ना 2 बजे 3 बजे 4 बजे फिर
0: जी अच्छा
1: हां जी
0: गुड इवनिंग धर्मशाला भी सुन दे
1: तो मैडम कितने लगता गुड इवनिंग
0: 6 से 8 बजे तक लगता
1: है संध्या का पिंकी मैडम होइए सुषमा मैडम होइए तुहां होइए रुचिका मैडम होइए सचिन जी टेलीकास्ट मेरी भान जी ना इंदौर रही सब सुन दी तो गल करा दी मैडम जी बोले मगर सुशी मैडम गलांदे बड़े शैल बोले ना
0: जी
1: मैं कोई लारी गल कुछ ने पढ़िया लिखिया कुड़ी एजुकेटेड बच्चे ना मां मारे
0: जी
1: धन्यवाद मेरे मुझे गलाने डांग बड़े शैल मैडम है ना भान जी बोले
0: मेरी जी
1: हां जी
0: जी राकेश जी आज तो हाँ कुंदिया गीत
1: आज मैडम जी सुनना मैं ना रुमेल सिंह ना चक्की डेरा पाबो पाबो पाबो दे डेरा
0: जी जरूर धर्मशाला अगले जेड़ा श्रोता ने सभी यहां करने जुड़ चुके हैं कर दें तिना करने गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: हेलो नमस्ते सुशी मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहां
2: दा। हां हां गल्लां की खुश करी इंदे दा गाने दा दिखे कोई
0: जी।
2: हां हां बेल ले रहे ना
0: जी जी
2: 4 बजे दा लाइन दे तोड़े गाने सुनने
0: जी। अच्छा 4 बजे ही रेडियो सेट तो हां करी हां
2: जी 4 बजे लाई जाना
0: जी
2: स्नान करना 5 बजे तले तोड़ा गाना लाई के
0: जी जी
2: मन जी आज तुहां ए सुनन्यो
0: जी
2: बन
0: जी जी तो अपना नाम भी दे सी दिया जी क्योंकि कुदरत नियम है ना जी, जिंदगी रोज जुड़ा करा कने कार्यक्रम सारे सुना करा ना जी।
2: कल गुंजन नहीं लग गया तो मैं फोन ची सुनी ला गाने
0: जी। अच्छा फोन ने ची
2: गुंजन तो गुम हो गया
0: जी, गुंजन नहीं होता घूमे थी अली
2: जी जी जी जी
0: जी जरूर जी। तो हम जेड़ा फरमाइश है से तो हम तक पहुंचा दें जी। जी जी
2: बड़ा गलान बोलने में बड़ा ख्याल
0: जी। धन्यवाद जी,
2: धन्यवाद जी। ठीक मेरे
0: ये तो हां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशो तो इसी करने हां अपने कार्यक्रम दे सफर जो भी थोड़ा दिया अगे बढ़ाते हैं कने तुह जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते हैं तुह तक पहुँचा देन अगली फरमाइश। यहाँ तक पहुँची हुए दाड़ी ते कने तिना दा ना वे मेघना जी, तो जरूर मेघना जी तक अहाँ फरमाइश पहुँचानी है कने तुह सारे भी इंजॉय करनी है।
3: एक भजन आप और सुना दें आपकी बड़ी कृपा होगी।

0: 91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तोहा सारे इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न सभी जरूर आ कन्ने जुड़ चुके न कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी ठीक ठाक
0: जी। तो हां अपना
1: ठीक ठाक है मैडम जी।
0: जी हां बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो हां अपना परिचय जरूर दे दिया जी।
1: हां जी गाना सुनना मैडम
0: जी। गाना जरूर तुहां तक पहुंचाना है जी। तो हां अपना नाम जरूर दसी दिया जी। कुथु दे रहने वाले ने कने ना अपना
1: ना मेरा तो कनेडा ते बोलना
0: जी। जी अनु जी कनेड ते बोला दे।
1: हां जी
0: हां जी जी। ता अनु जी आज कना दिन तोहंदा कदिया की चलया? क्या कामकार तोहा छेड़या? क्या करा दे?
1: मैडम जी दिन ठीक या धूप लगी हो
0: जी? अच्छा धूप दा जेड़ा लूप तैसे पूरा पूरा ला दिन तो हम जो लगा था।
1: हां जी हां
0: जी जी।
1: आजकल होना नहीं ठंड यही मौसम बदल ही गया समझा भी आगा।
0: जी जी मौसम बदलू ही है था मन थोड़ा देर करता है कि सर्दियां दे मौसम च धूप नहीं सेक की तो तल तक मजा नहीं होता ना जी।
1: हां जी
0: जी जी।
1: जिन्ना खाना थोड़ा खा दागे ना बाहर तो बैठिए गाने थोड़ा देर करी माफ ले फोन एक।
0: जी जी धूप लेने जरूरी है ना जी।
1: हां जी
0: जी जी जी। ता अनु जी आज यहाँ जेड़ा कार्यक्रम च खास दिवस बना दे ना आज 9 अक्टूबर है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी। ता विश्व डाक दिवस जेड़ा है से आज यहाँ बना दे ना ता तो हाँ अगर चिट्ठियां दा जेड़ा जमाना था से कितना प्यारा था ना जी।
1: चिट्ठियां जमाना बड़ा अच्छा है मैडम जी।
0: जी बड़ा अच्छा था ना जी।
1: चला आज डाक ये बंदे चिट्ठियां लेके
0: जी जी
1: अजकल जमाने ठीक होंगे
0: जी। अच्छा ठीक होंगे थे मतलब तो हाँ भी बड़ा मिस करते ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। चलो यादा तो जरूर संजोई के रखनी है ना पर हाँ कुछ ना कुछ बदलाव भी जरूर करी सकते क्योंकि ठीक है आगे बढ़ना भी जरूरी है जागरूक होना भी जरूरी है ना जी।
1: हाँ, भी है।
0: पर अपनी जेड़ा हाँ मान सम्मान है या बड़िया का मान सम्मान किस तरीके ने करना है उस चीज जो हाँ समझना भी जरूरी है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी बड़े का मान करना तो जरूरी है मैडम
0: जी जी क्योंकि आज के दौर की यहाँ गल करिए तो कुछ ना कुछ ये चीज जेड़ा है से बिल्कुल खत्म है ना जी।
1: खत्म है मैडम जी। आजकल दिखा ना जी आजकल बच्चे सुनाई ही नहीं कर दे
0: जी जी
1: बड़े का कहना मन दे नहीं जरा
0: जी ये तो बिल्कुल तो सही गल बोली।
1: बोलना तो बोल दे खाल ले जरा जरा जरा खाल ले
0: जी
1: आए आए आए मम्मी आए
0: जी जी जी क्योंकि यहाँ बाकी गल क्या करनी है अपने घरे ची यहाँ दिख दे ना तो कुछ ना कुछ यहाँ जो ये चीज दिखने जो मिलती है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी। चलो अपनी जेड़ा सोच है कने बच्चे जो भी प्यारे ने समझाना है क्योंकि प्यारे ने हर चीज अच्छी लगती है ना जी।
1: हाँ जी मेरी ताई एक मुन्नी आओ सारी शादी करी थी
0: जी जी जी
1: करी थी
0: जी। चलो अच्छी गल है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी। ता अनु जी आज तो हाँ कुछ क्या गीत सुनना पसंद करके
1: गाना सुनना ईशांत ईशांत भारद्वाज
0: जी। अच्छा ईशांत भारद्वाज जी की आवाज शकुंडिया गीत सुनना पसंद करके तो हाँ पहाड़ी गाने तो कुछ ना कुछ यहाँ जो अपनी लोक संस्कृति कन्ने भी जोड़ी के रखते है ना जी।
1: हाँ जी।
0: कन्ने अगर हाँ शादी विवाह की गल करिए ता तिनस ता और रौनक लगाइंदे ना हल्दी लगा देन, हल्दी दी रस्म करा देन, जमाकड़ा है ना जी।
1: पता क्या लगाते ही बड़े शैल लगते ना, दिखा ना हूं तो बस बीज लगाई दे दे।
0: जी जी जी सही है
1: ना, छोटे छोटे
0: जी। मीना भर पहले ही जेड़ा से रौनक आला।

इसी नमस्ते कन्ने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी सकते कन्ने तो हाँ भी आज हाँ जिहड़ा खास दिन बना देन विश्व डाक दिवस चिट्ठियां दा जिहड़ा दौर है तो हाँ सारे भी कमेंट करके जरूर दसी सकते कि तो हाँ जो कितना प्यारा लगता था जलू या भाई दा खत अहाँ तक पहुँचता था या बहन दा खत अहाँ तक पहुँचता था या से चिट्ठी जड़े से अहाँ तक पहुँचती थी। कन्ने माता पिता दी गल करिए तो से चिट्ठी अहाँ तक पहुँचती थी तो कदे आ महसूस तो हाँ जो होंदा था। तो इसी कन्ने अहाँ फिरी ते थोड़ा दे आगे बढ़ते न कन्ने तो हाँ जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न अगली फरमाइश जड़े से अहाँ पहुँचा देन राकेश जी तक से रहने वाले न नरवाणा ते तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

0: हेलो सर।
1: दर्शकों तो सारे ही सुनिया है कि ते फरमाइश फिर त्या हाँ वापिस आई होना अपनी गलबात उपर कने तो सारे भी गलबात कने जुड़ी होने न कने समय दियाँ गल करिए तो समय भी अपनी रफ्तार लेकर जरूर चल लिया है कने यहाँ भी समय के अनुसार जेड़ा न से जरूर चलियो न कने इसी कने आज यहाँ जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा देन खास दिन बना देन से बना देन विश्व डाक

0: बस तो श्रोताओं कुथी ना कुथी यहाँ जो अपनी जेड़ा यादा न जेड़ा चिट्ठिया न चिट्ठिया का जेड़ा जमाना था यहाँ दिया जेड़ा भावनाएं न तिना करने यहाँ जो जरूर जोड़ी करी रखद है। सभी क्या दौर था जल वहाँ यानी कि इंसान जड़े से आज के दौर की गल करिए हर कोई एक बटन दबादा है कन्या कुथू दे कुथू अपनी जेड़ा कॉल है वीडियो कॉल है या ऑडियो कॉल है या अपना मैसेज जड़े से हर कुसी तक पहुँचाई दे न। इसी कन्या अगले जेड़ा श्रोता ने पहले तिना करने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी धन्यवाद जी।
0: जी तो इंदु जी सिद्धबाड़ी दे रहने वाले ना जी?
1: जी बिल्कुल जी।
0: जी तो इंदु जी आज तुहां क्या काम कार छेड़िया कने मेरी जेड़ा गल्ला बातां न तिना भी सुना दे कि कम्मे करी आ दे तुहां
1: कम्मा ही लगी आ कने कम थोड़ा रेडियो भी सुनना सब कुछ करने हुंदा है
0: जी। अच्छा मैं सोचे कई बार होंदा ना कि हां कम्मे च बिजी होंदे ता सुनी नहीं पांदे ना जी।
1: बिना रेडियो तो काम सुने कर ही नहीं सकते मैं
0: जी। अच्छा बिना रेडियो तो तुम काम ही नहीं कर सकते
1: ना? बिल्कुल जी, मेरा तक कने कने काम चले दा कने कने कने पे आके चले के रात तक रेडियो चले होना
0: जी। ता बड़ी अच्छी गल है जी, तुहां रेडियो भी सुनदे कने अपने जेड़ा काम मन सभी करदे।
1: बिल्कुल जी।
0: जी ता आज क्या तुहां काम कार जेड़े से छेड़िया?
1: आज तक कने कने सगाड़ुआ दा काम लिया
0: जी। अच्छा सगाड़ुआ च क्या करा दे तुहां आज?
1: दौर
0: जी बड़ा ही ज्यादा था ना जी।
1: हाँ जी आजकल देखा आजकल हर चीज फोन में चलो फोन में की फैसिलिटी भी है कुछ ही आज ही टाइम बची गया कुछ ही आना वाना कुछ फंक्शन है या कुछ भी है पर किसी तरह कल फोन में बोल दे पर फिर भी मतलब इससे बड़ा नहीं है कि हाँ जाना होना छड़ी थी है।
0: जी जी
1: हमेशा वाली है गल रही है पहले चाहे जी यहाँ पहले बोला देखे गल करा देना यार हमेशा की चिट्ठियां पढ़निया बार बार तो सचिंग ही कर दे है सारे बार बार चिट्ठी पढ़नी है
0: भाई बहन तिना जो कॉल करी पान या तिना जो मैसेज करी पान इतना समय अहल मिंजरी लगदा बिलकुल ही नहीं है अहल चाहे इंस्टाग्राम बेसक चलांदे रहेंगे चाहे फेसबुक जेड़े से सोशल मीडिया हाँ यूज करदे रहेंगे पर अपने जेड़ा रिश्ते नहां दे जेड़ा हाँ करने जुड़े न हाँ दा परिवार है उस जो हाँ समय नहीं दे पांदे।
1: बिल्कुल जी
0: जी क्योंकि यहाँ अपने आसपास भी दिखते न ठीक है घर भी अन सभी घर भी एक कमरे कमरे अंदर बैठी हो फिर भी है खामोश है मतलब फोन सारे लिए हाँ कुछ जो यानी कि गलबात करने लहा समय नहीं है समय है भी तो हाँ ये नज़रअंदाज करा दी कि यहाँ समय ही नहीं है हाँ बड़े ज़्यादा बिजी है ना जी क्योंकि परिवार हर चीज बड़ी अहम भूमिका अदा करता है ना जी। अगर हम
1: बिल्कुल जी
0: समझते
1: सर,
0: ना, कने अगर नहीं
1: बिल्कुल
0: समझते तो कुछ भी नहीं है ना जी।
1: बिल्कुल, आपने टपनी इनमें करिया
0: जी, हर
1: पूरी है, जितना ही कमे होना
0: जी
1: आहा तक कमे होना, बिल्कुल
0: जी हर रिश्ते दी अपनी अपनी जगह अहमियत है ना जी। जी, पर से अहमियत मुझे लगता है आज के दौर च कुछ ना कुछ नजरअंदाज करना लगी पी
1: हाँ
0: हाँ।
1: जी बिल्कुल, टोटल खत्म ही हो रही दिन पर दिन। हाँ
0: बिल्कुल खत्म है, चाहे से
1: जी
0: माता पिता दा प्यार है, चाहे से माता पिता दा बच्चे वास्ते प्यार है, या माता पिता दा बच्चे वास्ते, या पिता माता दा जेड़ा से आपू
1: जी
0: बिच्छी ना जी, से बिल्कुल ही खत्म है।
1: जी
0: हाँ, अपने आसपास हर दिन आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ सुनते रहते ना जी।
1: जी
0: पर हाँ, जो बच्चे, जो मैं हमेशा यही बोलना चाहती कि जेड़ा पेरेंट्स अपने बच्चे वास्ते इतना कुछ कर दे ना, कने हाँ कुथी ना कुथी तिना जो नज़रअंदाज कर दे ना, तो से सबसे बड़ी गलती है हाँ दी ना जी।
1: बिल्कुल, पर जो बच्चे ना छोटे का उन्हें
0: जी
1: यहाँ उस तरीके ने संस्कार देना, उस तरीके ने समझाना, अगर टाइम कल्ले रख देना तो
0: जी जी
1: तेना भी कल्ले, उसने कल्ले रहने जाते तो पई जानी, तो तेना भी फिर कल्ले सारी बात नहीं पूछनी
0: जी
1: है ना। चीता ये हम बनता ही बोलते हैं, बच्चे ने टाइम स्पेंड करा सार, मतलब अपने ने टाइम स्पेंड करा, चाहे बच्चे चाहे बड़े होना।
0: जी जी चाहे बड़े न चाहे छोटे न, कने
1: हाँ जी
0: परिवार भी उस
1: कहना
0: तरह की।
1: चाहिए
0: जी
1: हाँ, परिवार से जेड़े बड़े ना, हाँ जो दिखी के सारे बच्चे जेड़े ना, तीन विषय करना जेड़े हाँ कह गए सही।
0: जी जी जी उस तरीके ने माहौल
1: हाँ
0: रखने की जरूरत है ना, कि बच्चा
1: जी
0: हर दिन
1: बिल्कुल
0: कोई
1: जी
0: ना कोई चीज जरूर सीखता है ना जी। कने
1: जी
0: तो हम बच्चे जो अगर छोटे बच्चे ने तीना जो नोटिस कर देना, तो से जरूर अगर हाँ कोई गलत काम करा देना, तो से जरूर पूछ देना जी।
1: जी बिल्कुल
0: ता इसी कने अगर हाँ माहौल उस तरीके ने रख देना, तो बड़ी अच्छी गाल लेना जी।
1: जी बिल्कुल, सबसे बोली गल मैं तो बोलती कि बच्चे ने फ्रेंड बनी के रिया, क्योंकि बच्चे
0: जी
1: की जरूरत
0: जी
1: होती किसी ने अपनी गल्ला शेयर करने दी, तो
0: जी
1: ना तो फिर अगर हम तिन्हें टाइम नहीं देंगे तो तिना बच्चे से तो तिना तो बच्चे फिर और ही दोस्त ने अपनी गल्ला लानी है, तिना अपना
0: जी
1: दुख सुख शेयर करना है ना,
0: जी
1: तो
0: जी जी उस तरीके
1: फिर
0: ने
1: अगर फिर किना माहौल अगले जिना दोस्त ने जिन्हें अपना दुख शेयर करना, तो तिना दे मतलब जिन्हें माहौल कभी होना चाहिए, तो फिर उसी हिसाब से हो जाता ना चेंज, फिर सब कुछ
0: जी।
1: बोलते अगर अपने मोहल्ले च रखना तो फिर बच्चे तो अपने हिसाब से रखने। जी
0: जी, ता इंदु जी आज कुंडिया गीत सुनने जी तो हाँ।
1: आज गीत नहीं सुनना, बस मैं जरा की गाली करनी थी, मतलब तू अपनी सुंदा लाइन ने कोई सुंदा टाइम था तो
0: जी जरूर जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: हमारे बड़े बड़े धन्यवाद जी।
0: जी तो शो तो चल देना थोड़ा देर कार्यक्रम ते सफर जो अगे बढ़ा देना, कने तो जो फरमाइश दी ओर लेकर चल देना, ये फरमाइश तुह तक पहुंचा देना, तुह सारे भी इंजॉय करा।

हाँ बोला देना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारी इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो तो शशि कने। इसी कने अगले जेड़ा श्रोता न से यहाँ तक अपनी जेड़ा फरमाइश है से पहुँचा देना व्हाट्सएप के माध्यम ने कने गीत तो हाँ सारे ही सुनिया ये भी व्हाट्सएप के माध्यम ने यहाँ तक पहुँचे है। तिना का नाम है शमशेर सिंह जी कने से रहने वाले न दरगाटा ते तो जरूर तिना तक हाँ ये गीत पहुँचाया। कने अगले जेड़ा श्रोता न लक्की शर्मा जी से रहने वाले न डाट ते तिना गीत सुनना है करनैल राणा की आवाज़ च पटना दे तारू है तो जरूर तिना तक हाँ ये गीत पहुँचाना है। कने इसी कने तिना एक जेड़ा छोटा जहा मैसेज अहाँ तक पहुँचाया है कि जेड़ा चिट्ठियां दा दौर था से अपन दा हाल चाल पूछने वास्ते एक मात्र जेड़ा जरिया था। कने उस टाइम जेड़ा से बड़ा ही प्यारा लगता था। कने कागज़ पर जेड़ा लिखी चिट्ठी थी से जरूर अहाँ जो अपन दी जेड़ा याद है अपन दे जेड़ा लफ्ज जेड़ा तिना लिखा होंदा था से अहाँ जो हमेशा कुथी ना कुथी याद दिलांदे न। कने अपन दा जेड़ा हाल चाल है से अहाँ चिट्ठी दे माध्यम ने जेड़ा से तिना तक पहुँचाते थे तो श्रोताओं तो सारे जो भी जरूर से दौर जेड़ा से बड़ा ही प्यारा लगता है। कने लगना भी चाहिए क्योंकि अजकने दौर की गल करिए हर चीज़ हल है पर से प्यार भावना बिल्कुल ख़त्म है। तो इसी कने अहाँ थोड़ा दिया क्या वर्दे न कने लकी शर्मा जी तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचा देना तो सारी भी इंजॉय करा।

0: go-to film.
1: ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने इसी कन्ने तो हाँ सारे गीत एंजॉय कीता कन्ने समय दी और नज़र दौड़ान दे थोड़ा दिया फिर ते हाँ अगे बढ़ते न क्योंकि समय जेड़ा है से थोड़ा दिया है तो समय के अनुसार चलना भी जरूरी है। समय के अनुसार अहाँ चलते न कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते हैं समय सिर्फ अहाँ चार मिनटा जेड़ा न से बचियां न तो इसी कन्ने अहाँ फिर ते अगे बढ़ने कन्ने गलबात जेड़ा है से अहाँ आज करा दे न क्या गलबात करा दे तो हाँ सारे ही गलबात जरूर सुनी होनी है विश्व डाक दिवस जेड़ा है से आज अहाँ बना दे न तो जरूर बनाना तो बनता है ना हर दिने दी अपनी खासियत है पर हाँ हर दिने जो किस तरीके ने खास बना देना से यहाँ पर निर्भर करता है।

रंजन धर्मशाला। दर्शकों तो सारे कार्यक्रम इंजॉय करा दे थे अपनी रेडियो तो शशि करने। इसी करने गीत हाँ पहुँचाया अनु जी तक सरेने आले न कनेर थे कने। इसी करने इंदु जी तक भी तिना तक ये फरमाइश हाँ पहुँचाई है कने सरेने आले न सिद्धवाड़ी थे। हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद है। इसी करने तो सारे जो पता है कि कार्यक्रम का जोड़ा समय है से तुह तक रहा है 2-3 बजे तक। तो इसी करने तो सारे अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है।

0: इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
1: डॉक्टर।
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्त

हंसी और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है।

91.2 मेगाहर्ट्ज पुठे वेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और श्रोतों आऊँ हाँ तो सुगे तुंद अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर क्या हाल चाल न तुंदे और क्या हाल चाल न तुंदे ग्रां रे उम्मीद करनू तो है भी ठीक ग्रां भी ठीक श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ यानी कि तुंद अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर हाजिर पूछे हुआ आइये श्रोतों कार्यक्रम रा आगाज कर देने सभी पहले इस खूबसूरत गीत होगी आइये हूं तेन श्रोतों एक गीत

91.2 MHz पर थे रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो है सब ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा श्रोतों इस वक्त चल रही ने तुम दे सब भी वे रेडियो सेट मा था श्रोतों हेर लिया मुरली कैसे बजाए काने। जी हाँ, ऐसे बजाए मुरली कि शुद्ध बुद्ध किया सुख होएगी। ईशान भारद्वाज इस गीत अंदर ये दसो कि मुरली ऐसी बजाई थी कि शुद्ध बुद्ध किया सुख होएगी थे। तैय श्रोता हूँ कार्यक्रम जो हगु बनंदन और हगु हुंदन है प्यारे दिया गीत तो है बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी।

শত 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা তো সবই টিউন কর রহা হ্যায় কার্যক্রম ইস ওয়াক্ত চল রহা হিন্দি আপনি গপ্পা তো শত কেবল লুন্দে নিশান ভারদ্বাজ কি রূপ ভি বদলে ওর জহনে রূপ বদলে তো মা বুড়ে ভি ডরে सेली भी डरी गोरारी और सब डरे है ना, पर रूप बदलना बड़ा ज्यादा जरूरी है। श्रोताओं तो है भी अपनी जिंदगी अंदर रूप जरूर बदला, लेकिन इंसानियत रहा रूप किया सो जरूर बदला। श्रोताओं यानी कि अच्छे काम किया, अच्छे रूपांतर काम किया सो जरूर करो करा और अच्छे अच्छे काम जरूर करो करा। बहरहाल श्रोताओं याद रखा, अगर तो है कुछ अच्छा हुनंदे ने समय तो सो हुनंदे ने कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा सचिन कपूर सोगे। आइए श्रोताओं कार्यक्रम जो आगू बढ़ंदे और अगला गीत हुनंदे तुंदे वीडियो सेट में।

जदों ये रेडियो गुंजे ना और तुम अपना रेडियो गुंजे ना और आओ तुम अपना सचिन कपूर 91.2 MHz पर तो है रेडियो गुंजन जो ट्यून कर रहा था श्रोतो। जी हाँ, बिंद्रा बना वो खेरी गोजरियो कुणी वो न रहने है ना, कुणी वो न रहने तो बिल्कुल क्या बोलूं दे निशान भारद्वाज इस गीत अंदर तो है सब ये हुनु अशोतो। और तशोतो कान के बोलूं दे कि अगली ये हटी गच्छे और पिछली ये मुड़ी गच्छे, पर गबली जो किया सो गाना न दिला तब तो है भी बिल्कुल जो गब बेबकुरे तुम देते सी मत गाना दे बखाली हड्डा को कार्यक्रम बड़ा मस्त था और ये चलना मस्त मस्त बन कर इस कार्यक्रम में। बहरहाल श्रोतो याद रखा अच्छा हुनुंदे था क्या हुनुंदे वीडियो गुंजन दर्शो तुम अया कार्यक्रम जो हागो बड़न और कार्यक्रम मंच हुनदन अबे प्यारे दिया गीत।

श्रोतों कार्यक्रम इस वक्त चल रहा हिंदी अपनी गप्पा तुंदे सभी वे वीडियो सेट मा और बिल्कुल ईणा पीवा वो मुंजो भी ईणा पीवा को कार्यक्रम चल रहा था मुंजो भी ईणा पेणा है तुंदा दिल हुना थोड़ी सकदा सभी श्रोता रा और बिल्कुल आक मौके किया सो मिलने जो खोल वो खिड़की ताक मौके तो है भी खोली दे अपनी अपनी खिड़की यार एरा कुणी छुंदा मिलने जो और कुणी रुंदा तुसु बार आता हूं नारदाना हो शिमलो नारदाना हो बड्डी वो सुट्टा नक तेरा ते जो क्या गलाना हो अब जिसकी नक्का सर हमने वो आता था सी क्या बोलना है ना जैसा दब्बू बुआ जैसे कोड़े बुआ बरहाल है श्रोता हूँ सभी अपने अपने नक्का सरम के असो रखना चाहिए दिया याद रखा तो है कुछ खरा हूं दे कार्यक्रम हिंदी अपनी गप आइए श्रोता हूँ कार्यक्रम जो बिल्कुल हगो बढ़न देन और कार्यक्रम में हूं देन ये प्यार दिया गीत

आहा सो तो मजा चले ऐसा गीत है हुनेरा चिट्टी वो चरेली नारा पर आयो कजो मेवे दिलड़ू जो भायो तबे चिट्टी चरेली नारा के बंदी ने सोता हूँ तो सो सीधा दिलड़ू जो के ना सो वही गंदी ना है ना और फिर वही भी वही गंदी ना पर सो तो है गल्ला रे भी याद रखा चिट्टी वो चरेली नार के सो कुंवारी बुआ को रोज रोज घरे घरे झंडे के सोना जोलना तुमते है ना को आज कल ये ट्रेंड चल रहा ताओ बल्लो करदा और तुझको पता है जो भी बनो बिल्कुल साफ और सटीक बनो बरहाल याद रखा तो ये कुछ खरा हुनुंदे ता सो हुनुंदे ने कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा सचिन कपूर सोगे शो तुम बरहाल टाइम मारा ना पता ना चलता तू सोगी गप मारद तू सोगी इन इन गप्पा लंदे ता शो तुम मुंजो यानी कि तुमते अपने होस्ट और दोस्त सचिन कपूर जो दिया तो है इजाजत चलनुआ फिर मुलदे ना दत्ते जय धर्मशाला जय हिमाचल रखा अपना अपना ख्याल सब हुन दे रहे तुम अपना रेडियो गुंजन धन्यवाद।

नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे।

बीआरओ के महानिदेशक ने राज्यपाल से की भेंट। शाहपुर में 78 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर, भवन निर्माण पर 22 करोड़ और पीएमजीएसवाई के तहत 26 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। धारकंडी क्षेत्र की 4 सड़कों की डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजी, विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश। यूएई में इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए 14 अक्टूबर तक करें आवेदन। अब समाचार विस्तार से।

सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने आज लोकभवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश में वीआरओ द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं पहलों की जानकारी दी। उन्होंने चुनौतीपूर्ण भौगोलिक और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के बावजूद सड़क संपर्क बनाए रखने के लिए संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत करवाया। राज्यपाल ने प्रदेश के दूरदराज और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ बनाने में बीआरओ की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मजबूत टिकाऊ और लचीले बुनियादी अधोसंरचना के महत्व पर बल दिया। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए शाहपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई तथा सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान केवल सिंह पठानिया ने बताया कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर हैं। इनमें भवन निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा नाबार्ड के तहत संचालित विकास परियोजनाएं शामिल हैं। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न भवनों के निर्माण कार्यों पर लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन कार्यों को शीघ्र पूरा कर जनता को समर्पित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि लोगों को इन सुविधाओं का दीर्घकालिक लाभ मिल सके। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा एसएमई एंटरप्राइजेस मुंबई के सहयोग से मेसर्स वर्टिव गल्फ एलएलसी संयुक्त अरब अमीरात में इलेक्ट्रीशियन फिटर हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों हेतु मासिक वेतन 1100 से 1300 यूएई दिरहम प्रति माह, ओवरटाइम और उम्मीदवारों को निःशुल्क भोजन या भोजन भत्ता, रोजगार की शर्तों के अनुसार आवास एवं परिवहन की सुविधा और नियोक्ता द्वारा वीजा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सुविधाएं, साप्ताहिक अवकाश तथा रोजगार अनुबंध और यूएई के नियमों के अनुसार अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। इन पदों के लिए 20 से 45 वर्ष की आयु के आईटीआई डिप्लोमा होल्डर पात्र होंगे। उम्मीदवार के पास अपना वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों के पास पासपोर्ट नहीं है लेकिन आवेदन के लिए पात्र हैं, लेकिन चयन होने के 7 दिनों के भीतर पासपोर्ट बनवाना अनिवार्य रहेगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। चयनित उम्मीदवारों को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 35,400 रुपए के अतिरिक्त जीएसटी व 1500 रुपए चिकित्सा शुल्क देना होगा। किसी भी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 0189222489292।

देश के राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों और टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन मंत्रालय टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों के लिए एक विशेष सालाना पास योजना लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोज रोज के टोल टैक्स के भारी खर्च से मुक्ति दिलाना है। नए प्रस्ताव के अनुसार टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान करके साल भर की वैधता वाला पास जारी किया जाएगा। इसके बाद वे बिना किसी अतिरिक्त दैनिक शुल्क के टोल प्लाजा से असीमित बार आवाजाही कर सकेंगे। इस कदम से न केवल स्थानीय निवासियों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी बल्कि टोल काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों और स्थानीय विवादों में भी कमी आएगी। एशियाई क्रिकेट परिषद ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2026 का कार्यक्रम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। ओमान में ये टूर्नामेंट 5 से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। सबकी निगाहें भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले पर थी, जिसके लिए एसीसी ने 8 नवंबर का दिन निर्धारित किया है। दोनों टीमों के बीच ओमान के ओसीए ग्राउंड में मुकाबला होगा। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4-4 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत के ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा यूएई और नेपाल अन्य 2 टीमें हैं। भारत अपना अभियान 6 नवंबर को नेपाल अंडर 19 के खिलाफ शुरू करेगी। ग्रुप स्तर पर सभी टीमों के बीच कुल 12 मैचों का आयोजन होगा। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें 12 नवंबर को सेमीफाइनल में भिड़ेंगी। फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार का पिक एंड चूज की नीति को अवैध करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संवर्ग में पदोन्नति वाले उच्च पद का वेतनमान उसके फीडर पद से कम या उसके बराबर नहीं हो सकता। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने शशिपाल ठाकुर और 57 अन्य स्वास्थ्य शिक्षकों की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने सरकार के 30 जनवरी 2016 को उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, जिसके तहत स्वास्थ्य शिक्षकों को निचले पद के बराबर 4200 का ग्रेड पे दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब तय समय सीमा बीतने के बाद अपील करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने यूनिफाइड पब्लिक सर्विस गारंटी पोर्टल पर ऑटो अपील सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत यदि किसी अधिसूचित ऑनलाइन सेवा का निर्धारित समय में निपटारा नहीं होता है तो मामला अपने आप संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास पहुँच जाएगा। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। ये व्यवस्था स्टेट कोलैबोरेशन इनिशिएटिव के तहत शुरू की गई है। शुरुआती चरण में 4 विभागों की ऑनलाइन सेवाओं को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 पर श्रोताओ आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन, लेकर हाजिर हुई हूं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने।

करते हैं तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे भी हो तुम जैसे भी हो।

इस वक्त आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और लुत्फ उठा रहे हैं सुहाने से गीतों का, यानी कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का।

गीत सुहाने नए पुराने का संगम लेकर हाजिर हुई है आपकी जानी पहचानी सी दोस्त सुमन। तो आइए चलते हैं सुरों की दुनिया में और प्ले करते हैं आपके लिए ये गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन, लेकर हाजिर हुई हूं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने।

इस वक्त आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और लुत्फ उठा रहे हैं सुहाने से गीतों का, यानी कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का।

गीत सुहाने नए पुराने का संगम लेकर हाजिर हुई है आपकी जानी पहचानी सी दोस्त सुमन। तो आइए चलते हैं सुरों की दुनिया में और प्ले करते हैं आपके लिए ये गीत।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता, तो इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। हमारे श्रोताओं का इंतजार रहता है शाम के समय कि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर हमारे दोस्त आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल पहुंच चुके हैं हम रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो आज के कार्यक्रम में करेंगे श्रोताओं हम ढेर सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा और सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत। श्रोताओं, जीवन जो है हमारा चलता रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे तो जीवन हमारा पूरा नहीं होगा। और वैसे भी जीवन चलने का नाम है। तो आइए इसी से जुड़ा हुआ गीत आप तक पहुंचाते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

बिल्कुल श्रोताओ, जीवन चलने का नाम है और हमें चलते जाना है, रुकना तो बिल्कुल नहीं है। अगर रुक गए तो जीवन की गाड़ी भी रुक जाएगी। जीवन में आए हैं तो अपने जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। श्रोताओ, इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ कार्यक्रम में आज के सुविचार की बात करें तो हमें कभी भी अपने परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं और इन्हीं कठिनाइयों में हमें धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। एक दिन अपने लक्ष्य को व्यक्ति ज़रूर प्राप्त करता है जो थोड़ा मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। जीवन की बात करें तो उतार चढ़ाव श्रोताओ जीवन में आते जाते रहते हैं। हर किसी का जीवन स्थिर नहीं रहता है, कभी धूप तो कभी छांव, कभी दुख तो कभी सुख, जीवन में चलते ही रहते हैं। इसी तरह से हर

एक की जिंदगी में होता है। अगर हम कठिनाइयों से हार गए तो जीवन में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं कठिनाइयों से आगे हमने बढ़ना है और जीवन में तरक्की भी पानी है। कहते हैं जीवन में अगर हमने सपने देखे हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन एक छोटा सा कदम हमें आगे बढ़ाना है। जब हमारे कदम आगे सफलता की ओर बढ़ते हैं तो एक ना एक दिन हमें सफलता भी ज़रूर मिल जाती है और उस समय हमें भी बहुत सारी खुशी मिलती है कि हमने कहीं ना कहीं उस मुकाम को हासिल कर लिया है जिस मुकाम के लिए हम लगातार मेहनत किए जा रहे थे। श्रोताओं, मेहनत करने का फल जो है मीठा ही होता है, तो लगातार मेहनत करते रहिए, फिर देखिए किस तरह आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। इन्हीं खुशियों के साथ थोड़ा सा फिर से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो श्रोताओं, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। तो मिलकर

तो इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की। श्रोताओं, आज के दिन को हम मना रहे हैं वर्ल्ड पोस्टल डे यानी विश्व डाक दिवस। प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है और मुख्य जानकारी और इतिहास की बात करें तो हर साल इसे हम आज के दिन ही मनाते हैं और इसकी स्थापना जो है 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न में सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना में हुई थी। और साथ ही साथ श्रोताओं, इसकी घोषणा की थोड़ी सी बात करें तो वर्ष 1959 में जापान से टोक्यो में आयोजित यूपीएस कांग्रेस द्वारा इस वर्ष को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई थी। साथ ही साथ श्रोताओं, आज के दिन के उद्देश्य की बात करें तो लोगों और व्यवसायों में दैनिक जीवन में डाक सेवाओं की भूमिका तथा वैश्विक सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में फिर से थोड़ा सा रुकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए रेडियो विजन धर्मशाला।

जी हाँ बिल्कुल श्रोताओं, कब सुबह से शाम हो जाती है हमें भी पता नहीं चलता है, और जब शाम होती है तो हम याद करते हैं अपने अपने इष्ट देवों को। संध्या के समय और सुबह के समय भगवान को ज़रूर याद रखना चाहिए, और ये भक्ति भाव हम सभी के बीच में होना चाहिए, क्योंकि एक उन्हीं का सहारा होता है, वही हमें दुखों से बाहर निकालते हैं। हम अपनी टेंशन परेशानियों को उनके सामने रखते हैं, कोई भी दुख तकलीफ हो तो सबसे पहले भगवान को याद किया जाता है, कोई भी सुख का पल हो तब भी हम उन्हें याद करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। जीवन में आए हैं तो उठते बैठते खाते पीते हर समय हमें भगवान का, माता रानी का धन्यवाद करते रहना चाहिए इस जीवन के लिए, जो जीवन उन्होंने हमें दिया है। आज हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे कामकाज पर लगे हैं, अच्छे दोस्त हमें मिले हैं जिनसे हम हर दिन मिलते हैं, बातें करते हैं, और अच्छा शरीर हमें ऊपर वाले ने दिया है। इन सभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें परमात्मा का, ऊपर वाले का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल श्रोताओं, इसी तरह से हमारे जीवन में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं बात और जानकारियों के साथ फिर से आप सभी को ले चलते हैं गीतों की दुनिया में, तो ये जो

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार हम फिर से लौट आए हैं अपनी जानकारियों को लेकर। आज के दिन की बात हो रही है तो श्रोता, पोस्टल डे हम मना रहे हैं और हम सभी के घरों पर कोई समय ऐसा हुआ करता था कि पोस्टमैन चिट्ठियां लेकर आता था। वह बर्थडे कार्ड और राखियों से लेकर बहुत सारे कागजात हम तक पहुंचाता था, लेकिन फिर भी आज इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल, एसएमएस और कुरियर के ज़माने में पोस्ट ऑफिस का चलन बहुत कम हो गया है। एक वक्त था जब बड़ी बेसब्री से हम लोग पोस्टमैन का इंतज़ार करते थे, और जब बचपना था तो हम लोग उन्हें कई बार चिढ़ाते भी थे, उन्हें आवाज़ें लगाते थे और हमारे पीछे कई बार वो भागते भी थे। उस समय भी ऐसा था, नटखट से हम सभी और शरारते किया करते थे। खैर, श्रोता, वो ज़माना ही ऐसा था, वो बचपना ही ऐसा हुआ करता था कि हमें पता नहीं होता था कि किसे क्या कहना है। हम मजाक कर दिया करते थे, ये छेड़ दिया करते थे किसे, और कई बार वो हमें परेशान भी करते थे, तंग करते थे, मारते थे। जब हमने उन्हें छेड़ना था तो उन्होंने तो हमें मारना था, हमारे पीछे भागा करते थे। वो भी क्या यादें थी श्रोताओं। और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता था चिट्ठी आने का, और जब चिट्ठी आ जाती थी तो उसे लेकर हम भाग जाते थे कि अरे चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। किसी खोलने नहीं देते थे, हर कोई एक दूसरे के पीछे भागता था कि चिट्ठी आई है, देखते हैं क्या लिखा है। लेकिन पहले तो एक दूसरे के पीछे भागम भाग शुरू हो जाती थी कि चिट्ठी आई है। बहुत देर के बाद चिट्ठी खुलने का समय मिलता था और फिर चिट्ठी खोलकर पढ़ी जाती थी। कभी राखियां निकलती थी तो कभी टीका भी उसके बीच से निकलता था, और कभी बहुत सारा प्यार दुलार अपनों का उस चिट्ठी के माध्यम से हम तक पहुंचता था। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में थोड़ा सा रुकते हैं और लेते हैं पहले अंतराल, और अंतराल के ठीक बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप यूँ ही बने रहिए रेडियो उज्जैन धर्मशाला के साथ।

साइकिल की बजती थी तो हम भाग जाते थे, तो साथ ही साथ या कहीं भी डाकिये को देखते थे कि डाकिया आ गया है तो एक दूसरे को बताते थे कि डाकिया आ गया, हमारी चिट्ठी ज़रूर आई होगी और इंतज़ार रहता था चिट्ठी आने का। तो विश्व डाक दिवस हम आज के दिन मना रहे हैं। इस दिन 1874 में स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के लिए संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। साथ ही साथ श्रोताओं जो है आज के दिन को हम डाक सेवाओं के महत्व, उनके इतिहास और समाज में उनकी भूमिका को समझने के लिए भी मनाते हैं। विश्व डाक दिवस जो है बहुत सारी बातें हमें सिखाता है और जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे काम आज भी हम डाकखाने से करते हैं। पैसे तो जमा करवाते ही हैं, अपने चिट्ठियाँ, अपने पार्सल, स्पीड पोस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो है डाकखाने से ही हमारी होती हैं। अपनी बातों और जानकारियों के साथ फिर से कार्यक्रम में एंजॉय करते हैं। कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

चौदह समय आप एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। तो विश्व डाक दिवस 2026 की थीम की बात करें तो एक डाक नेटवर्क अनंत संभावनाएं इस वर्ष की थीम रही है। और इसका संदेश है कि डाक सेवाओं का एक मजबूत नेटवर्क लोगों, परिवार, व्यवसाय, दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़कर विकास के नए अवसर प्रदान करना है। और साथ ही साथ भारत में डाक सेवा को आम लोगों तक पहुंचाने वाली एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा माना जाता है। भारतीय डाक विभाग पत्र पहुंचाने के साथ साथ कई अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है। जैसे पत्र और पार्सल की बात करें तो लोगों तक चिट्ठियां, दस्तावेज और सामान पहुंचाना है। बचत सेवाओं की बात करें तो डाकघर बचत योजनाओं के माध्यम से लोगों को बचत करने में सहायता देता है। साथ ही साथ वित्तीय सहायताओं की बात करें तो पात्र ग्राहकों को धन हस्तांतरण और अन्य बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की बात करें तो दूर दराज के गांवों तक भी आवश्यक सेवाएं जो है पहुंचाई जाती हैं। व्यापार में सहयोग की बात करें तो छोटे व्यापारियों को सामान भेजने और ग्राहकों तक पहुंचाने में भी सहायता की जाती है। तो श्रोताओं, ये तो थी आज की जानकारियाँ और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में थोड़ा सा रुकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार हम फिर से वापिस आ चुके हैं, लेकर कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियां नई जानकारियों के साथ हम आज के दिन को मना रहे हैं वर्ल्ड पोस्टल डे के बारे में। तो कहीं ना कहीं हमारी बातों और जानकारियों के साथ हम पुराने ज़माने में पहुंच गए हैं, उन्हीं यादों में कहीं ना कहीं खो गए हैं कि जब डाकिया घर पर आता था और कहीं ना कहीं हम उसके पीछे भागते थे, अपनों को बताते थे कि अरे डाकिया आ गया है और ज़रूर हमारी चिट्ठी आई होगी। डाकिया का शो तो हमारे जीवन में बहुत सारा योगदान और महत्व रहता है, कहीं ना कहीं मेहनत की सेवा वो करते थे और आज भी करते हैं। ये डाक विभाग के कर्मचारी होते हैं जिनका मुख्य कार्य हम लोगों तक चिट्ठियाँ पहुँचाना, ज़रूरी दस्तावेज पहुँचाना, पार्सल और अन्य डाक पहुँचाना होता है। डाकिया अपने काम के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और वे केवल चिट्ठियाँ ही नहीं बल्कि हमारे संदेश, हमारे अपनों की बातें, खुशियाँ और हमारे अपनों की भावना भी हमारे तक लेकर आते हैं। और साथ ही साथ डाकिये की पहचान हमें उसकी वर्दी, कंधे पर लटके थैले और साइकिल या मोटर साइकिल से होती थी। वह धूप, बारिश, सर्दी और साथ ही साथ कठिन रास्तों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य का पालन भी करते हैं। गांव और दूरदराज के क्षेत्र में डाकिये की भूमिका जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे हम लोगों तक ज़रूरी सूचनाओं को और दस्तावेज पहुंचाते हैं। पहले के समय में मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं थी और हम सभी जो है डाकिये पर निर्भर रहते थे, क्योंकि हमें इंतज़ार होता था कि हमारे अपनों की चिट्ठी आएगी और कहीं ना कहीं हम चिट्ठी के माध्यम से बहुत कुछ जो है उनकी भावनाओं को, उनके संदेशों को खुद तक पाते थे और अपनों को भी उनके संदेश दिया करते थे। अगर अपने फूजी भाइयों की श्रोता बात करें तो फूजी भाई जो है सरहद पर बैठे होते थे, कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले उन्हें चिट्ठी लिखते थे, उनकी बहनों की राखियां उन तक पहुंचती थी, तो वो सब कार्य चिट्ठी के द्वारा ही हुआ करते थे। हर कोई चिट्ठी लेता था, उन्हें पढ़ता था और खुशी मनाता था। तो श्रोताओं, इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ कार्यक्रम थोड़ा सा रुकते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस पहले से गीत के बाद एक बार फिर से हम वापिस आ चुके हैं अपने विषय की ओर। तो कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं विश्व डाक दिवस के बारे में। तो श्रोताओ, कोई समय ऐसा था कि हम बड़ी बेसब्री से डाकिया का इंतज़ार करते थे, उसके आने पर बड़ी उत्सुकता से उसे ये भी पूछा करते थे कि क्या हमारी कोई चिट्ठी आई है या नहीं। किसी की नौकरी लगने, परीक्षा में सफल होने या फिर परिवार में खुशखबरी आने का संदेशा जो है डाकिया के माध्यम से ही हमें मिलता था और हम बहुत खुश हुआ करते थे। आज के डिजिटल युग की श्रोताओ बात करें तो आज संचार के साधन बदल गए हैं, लेकिन डाकिये का महत्व आज भी समाप्त नहीं हुआ है। आज भी पत्र, पार्सल और सरकारी दस्तावेज, अन्य सामग्री लोगों तक पहुंचाने में योगदान देता है डाकिया। ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन में भी डाक और पार्सल वितरण की भूमिका जो है महत्वपूर्ण रहती है। डाकिया के जीवन आसान नहीं होता है, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कठिनाई उसके जीवन में होती है, क्योंकि आज भी दूर दराज इलाकों की बात श्रोताओं करें तो वहाँ पर रास्ते बड़े ही पथरीले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है रास्ता ख़राब होने की वजह से उन्हें वहाँ भी पत्र देने जाना पड़ता है। तो लंबी दूरी तय करके ख़राब मौसम में भी अपना काम करते हैं और उनका परिश्रम जो है कहीं ना कहीं जो है सराहनीय रहता है। और डाकिया समाज की एक महत्वपूर्ण श्रोताओं कड़ी होती है। वह हम लोगों के बीच में जो है संपर्क बनाए रखने और आवश्यक संदेश पहुंचाने में सहायता करता है। उसका कार्य ईमानदारी और सेवा भाव की सराहना हम सभी को करनी चाहिए। साथ ही साथ डाकिया केवल चिट्ठी देने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि हम लोगों के बीच में संबंधों और विश्वास को बनाए रखने वाला एक जिम्मेदार सेवक होता है। उसका योगदान सदैव सम्मान के योग्य होता है। और जो है बचपन की याद तो खैर आज का दिन हमें दिलवा ही रहा है। आज जो है हम कहीं ना कहीं पत्र तो एक दूसरे को नहीं डालते हैं, पर कई बार पुराने समय की यादों में खो जाते हैं तो वो दिन याद आ जाते हैं कि जब हम घंटों बैठ कर पत्र लिखा करते थे, दिमाग वहीं घूमता रहता था। बेशक कोई काम भी करते थे लेकिन दिमाग में वो बात चलती थी कि अरे पत्र में ये भी लिखना है, वो भी लिखना है। कई दिन लगाकर हम पत्र लिखते थे और फिर अपनों को भेजते थे, वो भी बड़े प्यार से पढ़ते थे। एक बार पढ़ने के बाद कई बार फिर से उस पत्र को पढ़ा करते थे और मन ही मन खुश होते थे कि हमारे अपनों ने बहुत सारी अपनी भावनाएं इसमें लिखकर भेजी है। तो श्रोताओ, अपनी बातों और जानकारियों के साथ हम फिर से आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर। तो आइए इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: दोस्तों, तो इसी गीत के साथ साईं के 7 बजे हैं और कार्यक्रम में समय हो गया है समाचारों का।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, 7 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली

पूरी तरह बंद न करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं।

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसेट वन वेब सहित तीन कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। तमिलनाडु की दारापुरम में टीवीके ने जीत हासिल की, जबकि मधुरांतकम सीट पर टीवीके आगे चल रही है। पुदुचेरी की तट्टांचावी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने जीत हासिल की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर ने आज अदीस अबाबा में इथियोपिया के विदेश मंत्री घिदियोन तिमोथिओस हेजेबोन के साथ अदीस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी श्रोताओ, गूंज अपनी बन के साथ हम फिर से कार्यक्रम में वापस आ गए हैं और पोस्टल डे आज हम मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिट्ठियों का ध्यान तो हमारे जिक्र में आ जाता है क्योंकि हमें ज़्यादा इंतज़ार डाके से रहा करता था चिट्ठियों का, पत्रों का, ख़त का। और चिट्ठी, पत्र या ख़त एक ऐसा लिखित साधन है जिसका उपयोग प्राचीन काल से आज तक एक दूसरे का हाल, संदेश या सूचनाएं पहुंचाने के लिए किया जाता है। चिट्ठी से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। ये कागज़ जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई संदेश, समाचार या बात लिखी होती थी, बस उसे ही पत्र या चिट्ठी कहा जाता था। पुराने समय में संचार के आधुनिक

साधन नहीं होते थे। संदेश भेजने के लिए राजा महाराजा के समय में दूत जब घोड़े पर जाते थे या पक्षियों जैसे कबूतर का सहारा लिया जाता था, और चिट्ठी को सही पते और समय पर पहुंचने के लिए उस पर डाक टिकट भी लगाया जाता था। ऐसे चिट्ठी भेजने की प्रक्रिया होती थी। चिट्ठी का सफ़र इस तरह से पूरा होता था। पते को हमेशा छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई के क्रम में लिखा जाता था। मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, गांव, कस्बा, शहर, राज्य, पिन कोड इत्यादि। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो इंटरनेट, ईमेल और मोबाइल फ़ोन के आने से निजी बातचीत में चिट्ठियों का चलन जो है थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी सरकारी कामकाज, कानूनी दस्तावेज, नोटिस और अधिकारी दस्तावेजों के लिए डाक सेवा का भारी उपयोग किया जाता है। तो शोधो कहीं ना कहीं ये थी हमारी जानकारियाँ और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोता बब्बूमान की आवाज़ में आपने सुना इस पंजाबी गीत को। इसी गीत के साथ फिर से हम कार्यक्रम में वापस आ चुके हैं और हमारी बातचीत थोड़ी सी चिट्ठियों के ऊपर ही हो रही है। श्रोताओं, चिट्ठी सिर्फ कागज़ का टुकड़ा ना कहकर हमें इसे कह सकते हैं कि इसमें ढेर सारे एहसास होते हैं, अपनों का प्यार होता है और साथ ही साथ जो है अपनों से मिलने की बेताबी चिट्ठी या पत्र और भी बढ़ा दिया करते थे। इतिहास के बड़े बड़े नेताओं, साहित्यकारों और महापुरुषों के लिखे पत्र आज भी धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं। आज के डिजिटल युग में पलक झपकते ही संदेश भेज दिए जाते हैं। व्हाट्सएप और वीडियो कॉल से दूरियों को कम कर दिया जाता है, जिससे अब चिट्ठी लिखने का चलन लगभग समाप्त हो गया है। फिर भी पुरानी संदूकों या किताबों में दबी कोई पुरानी पीली पड़ी चिट्ठी जब मिलती है तो दिल को एक अलग ही खुशी दे जाती है। श्रोताओं, चिट्ठी हमारी संस्कृति और बीते हुए सुनहरे दौर की निशानी है। ये भले ही आज की तेज़ रफ्तार ज़माने में पीछे छूट गई है, लेकिन अपनों के हाथों से लिखे गए खतों में आज अपनापन और सुकून मिलता है। उनकी तुलना किसी डिजिटल संदेश से नहीं की जा सकती है। तो श्रोताओं, थोड़ा सा फिर से हम कार्यक्रम में रुकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्म।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार कार्यक्रम में फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो कार्यक्रम में कुछ स्थानीय जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं राजस्व बागवानी जनजातीय विकास तथा जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया है कि इस वर्ष जो है बारिश का समय न होने और फिर बेमौसमी बारिश होना, फ्लावरिंग के दौरान ठंड पड़ना और चिलिंग आवर्स सहित कई कारण रहे हैं। इस वर्ष सेब की फसल कम हुई है। बागवानी मंत्री ने भाजपा पर किसानों बागवानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पूर्ण भाजपा सरकार ने MIS के 114 करोड़ रुपए की देनदारी विरासत में मिली है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार की देनदारी देने के साथ अब तक किसानों बागवानों को 262 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। तो श्रोताओं, ये तो थी आज की जानकारी, यानी जानकारियों के साथ कार्यक्रम में फिर से सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए।

जी हाँ श्रोताओ, ओल्ड गानों की एक अपनी ही बात होती है, बहुत ही प्यारे होते हैं, दिल को छू जाते हैं। और खैर, हम गीत लगाते भी इसलिए हैं कि हमारे श्रोताओं को पसंद आए, और श्रोता सराहना भी कर रहे हैं गीतों की कि उन्हें अच्छे लग रहे हैं। और इन्हीं गीतों और प्यारी सी बातों के साथ फिर से हम अपने विषय की ओर आ रहे हैं। चिट्ठी की बात हम कर रहे थे, कहाँ पोस्टल डे मनाते मनाते हम चिट्ठियों पे पहुँच चुके हैं, और चिट्ठियों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि चिट्ठियाँ भी हमें बहुत कुछ पुराने समय की ओर खींच कर ले जा रही हैं। चिट्ठी पढ़ना अपने आप में एक सुंदर और भावनात्मक अनुभव हुआ करता था। पुराने समय में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट नहीं थे, तब चिट्ठियाँ ही एक दूसरे तक अपने मन की बात पहुँचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हुआ करता था। डाकिये का इंतज़ार करना, चिट्ठी मिलने पर उसे उत्सुकता से खोलना, उसमें लिखे शब्दों को पढ़ना, ये सभी पल बहुत खास होते थे। चिट्ठी केवल कागज़ पर लिखे शब्दों नहीं कहे जा सकते हैं, उसमें ढेर सारी भावनाएं लिखने वाले की प्यार, अपनापन और यादें छिपी रहती थी। जब हम किसी व्यक्ति की चिट्ठी पढ़ते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि जैसे वह व्यक्ति हमारे सामने बैठ कर हमसे बातें कर रहा है। और माँ की चिट्ठी की श्रोताओं बात कर लें तो माँ की चिट्ठी में बच्चे के लिए प्यार और आशीर्वाद हुआ करता था। पिता की चिट्ठी में जिम्मेदारियाँ और जीवन में आगे बढ़ने की सीख हुआ करती थी। मित्र की चिट्ठी में दोस्ती और पुरानी यादें हुआ करती थी, और प्रियजनों की चिट्ठी हमें कठिन समय में हिम्मत और सुकून देती थी। सबका चिट्ठी लिखने का अपना तरीका होता था, सब अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। माँ अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, पिता अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, हस्बैंड वाइफ की भावनाएँ अलग होती हैं और प्रियजनों की भावनाएँ अलग होती है। सब अपनी अपनी भावनाओं के जरिए अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो खैर, इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ हम फिर से कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का एक और अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से कुछ जानकारियां और हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक पहुंचाते हैं। शिमला जिले के रोहडू स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में नए भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना विभाग ने इस संबंध में लोक निर्माण विभाग को धनराशि स्वीकृत करने का पत्र भेज दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने 1 अक्टूबर को अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान रोहडू CBSE स्कूल में विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान एक छात्रा के आग्रह पर यह राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप जब धनराशि जारी कर दी गई है, तो संवाद के दौरान छात्रों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि क्या वह स्कूल के लिए नया भवन बना सकते हैं। अपनी समस्या बताते हुए छात्रों ने कहा है कि स्कूल की CBSE के संबंधित होने के बाद विद्यार्थियों की संख्या में

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। तो फिर से हम थोड़ी सी बातें चिट्ठियों की ओर कर लेते हैं, क्योंकि मन नहीं कर रहा है कि आज चिट्ठियों को छोड़ दें, क्योंकि पुरानी बातें पुरानी यादें जहन में फिर से आ रही हैं। चिट्ठी पढ़ने का श्रोताओं एक विशेष आनंद हुआ करता था, उसे हम बार बार पढ़ते थे, उसके शब्दों को संभाल कर रख लेते थे और वर्षों बाद भी उन यादों को फिर से जी सकते थे। आज भले ही संदेश भेजना आसान हो गया है, लेकिन हाथों से लिखी चिट्ठी का भावनात्मक महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। हमें अपने प्रियजनों को कभी कभार चिट्ठी ज़रूर लिखनी चाहिए, क्योंकि

0: चिट्ठी के शब्द कागज पर लिखे जरूर होते हैं, लेकिन उसका स्थान हमेशा दिल में रहता है। आज भी कभी ना कभी मन करता है, उन यादों में खोने को मन करता है, फिर से चिट्ठी लिखे और भेजे। देखिए कितने संदेश कार्ड के जरिए हमें आते थे और चिट्ठियां आती थी, कभी पीले लिफाफे में आती थी, कभी नीले लिफाफा चिट्ठी के रूप में हमें मिलता था और कभी कार्ड मिलते थे, तो कितनी खुशी होती थी उनको देख कर कि ये चिट्ठी हमारी आई है, और पढ़कर हम बहुत ही खुश हुआ करते थे। तो उन यादों में खोने को फिर से मन कर रहा है कि उन यादों में हम डूब जाएं, और इन यादों के साथ फिर से कार्यक्रम में आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा संगीत।
1: हम तुम मिलेंगे, मैं तुझे प्यार करूँ।

0: श्रोता, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है 7:45, तो आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, हिमाचल में सड़क, स्वास्थ्य व रेल सेवाओं सहित आर्थिक अवसरों के विस्तार के लिए निरंतर सहयोग कर रही है केंद्र सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का किया आह्वान। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, प्रदेश में इस बार कम हुआ सेब सीजन, अभी तक केवल 1,23,00,000 पेटियां पहुंची बाजार तक। विश्व डाक दिवस के अवसर पर प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन, 15 अक्टूबर तक होंगे कई कार्यक्रम। और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा के लिए निरंतर सहयोग कर रही है केंद्र सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का किया आह्वान। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, प्रदेश में इस बार कम हुआ सेब सीजन, अभी तक केवल 1,23,00,000 पेटियां पहुंची बाजार तक। विश्व डाक दिवस के अवसर पर प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन, 15 अक्टूबर तक होंगे कई कार्यक्रम। और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर के कथित प्रयोग को लेकर उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में सड़क सुविधाओं, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों के विस्तार के लिए निरंतर निवेश और सहयोग उपलब्ध करवा रही है। आज बिलासपुर में उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, रेल नेटवर्क, स्वास्थ्य, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के बाद एक पत्रकार वार्ता में ये बात कही। जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि प्रदेश में NHAI परियोजनाओं में कुल 55,103 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा निवेश किए गए हैं।
2: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 55,000 करोड़ रुपए की सड़कें बना, 55,000 करोड़ रुपए हिमाचल के बजट से ज्यादा है। यानी हमें देखने का नजरिया समझना होगा कि हम आपको जो साल का हिमाचल का बजट होता है उतना तो हम आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से।
1: जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन परियोजना में बिलासपुर बैरी खंड में भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले और राज्य सरकार द्वारा लंबित देय हिस्सेदारी उपलब्ध न करवाने से परियोजना में देरी हो रही है।
2: भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे की प्रोजेक्ट की बात करें, बिलासपुर बैरी लाइन 62 किलोमीटर और 13,410 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं। 75% रेलवे देने वाला है, 25% हिमाचल गवर्नमेंट देने वाली है। लैंड एक्विजिशन जो बिलासपुर से बेरी तक होना है, यह पिछले 3 सालों से स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ा है और इस कारण से बिलासपुर से हम आगे बढ़ने में अक्षम है। उसी तरीके से स्टेट को डिपॉजिट करना है 4,818 करोड़ रुपए, अभी तक स्टेट ने डिपॉजिट किया है 847 करोड़ रुपए और बाकी सब खर्च केंद्र सरकार कर रही है।
1: जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर केंद्र सरकार द्वारा कुल लागत का 90% वहन किया जाएगा, जबकि शेष 10% अन्य संबंधित राज्य वहन करेंगे।
2: 7,000 करोड़ रुपए दिए, इसको नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया। एक बहुत बड़ा काम हुआ है, आपको कभी किसी ने चर्चा नहीं की होगी, वो है किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये किशाऊ लगभग 20 साल से 4-5 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फंसा है, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इसको अभी जून में हमारे गृह मंत्री जी ने क्लियर किया और इस प्रोजेक्ट में 15,624 करोड़ रुपए खर्च हो गए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लूरी स्टेज 1 1,800 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से दिए गए।
1: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से शिक्षा, राष्ट्रभक्ति व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। सोलन जिला के वाकनाघाट स्थित निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि युवा पीढ़ी अनुशासन में रहकर कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सफल बनाने में अहम भूमिका युवाओं की होगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में सेब सीजन इस बार कम दर्ज किया गया है और अभी तक केवल 1,23,00,000 पेटियां ही बाजार तक पहुंच पाई हैं। उन्होंने कहा कि एमआईएस के तहत इस साल करीब 13,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई, जबकि बीते वर्ष 79,000 मीट्रिक टन सेब खरीदा गया था। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार एमआईएस के तहत सेब खरीद पर समर्थन मूल्य 1 रुपये बढ़ाने पर विचार कर रही है।
3: प्रदेश में सेम सीजन अब जो है लास्ट बोर्ड पर है और इस बार जो एमआईएस के तहत जो सेब एसपीयूसी और हिमफेड के माध्यम से लिया गया वो पिछले साल के मुकाबले बहुत ही कम था। अभी केवल 13,000 मैट्रिक टन ही आज की तारीख तक जो है एमआईएस के तहत हमने प्रोक्योर किया है और पिछली मरतबा जो है 98,000 मैट्रिक टन हुआ।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
4: यार 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है
5: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमे।
6: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
5: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
6: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और पहने और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा में जारी।
7: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
8: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकार
9: है। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
8: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
9: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
8: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
9: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, विश्व डाक दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा आज से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रदेश डाक परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि विभाग डाक संचालन में तकनीक और नवाचार के बढ़ते उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि सेवाएं हर नागरिक के लिए और सुलभ व सरल बन सकें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत प्रतिदिन विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
10: का सप्ताह डाक संचालन में प्रौद्योगिकी और नवाचार के बढ़ते उपयोग पर केंद्रित है ताकि डाक सेवाएं हर नागरिक के लिए और अधिक सुलभ, सरल एवं सुविधाजनक बन सकें। इस वर्ष का जो हमारा थीम है वह है एक डाक नेटवर्क अनंत संभावनाएं। इस डाक सप्ताह की प्रमुख गतिविधियां रहेंगी आज 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस का आयोजन करना और राष्ट्रीय डाक सप्ताह का उद्घाटन। सभी डाकघरों में बैनर और डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से विश्व डाक दिवस व डाक सप्ताह का व्यापक प्रचार प्रसार करना। एक डाक नेटवर्क अनंत संभावनाएं से संबंधित वीडियो का प्रसारण व लोगों को इसके बारे में जागरूक करना।
1: संजय सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही 110 मार्गों पर ड्रोन के जरिए डाक और पार्सल की डिलीवरी शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं अयोध्या में सरकार द्वारा स्थापित किए गए ऐतिहासिक राम मंदिर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर भारत की दृष्टि और भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है।
11: ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है।
1: प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट चोरी के बजाय खजाना चोरी के नारे लगाने चाहिए।
12: कांग्रेस के खुद के नेताओं ने 5 अटैचियां, जिसमें से 3 दिल्ली और 2 अटैचियां हिमाचल प्रदेश में रहने की बात कही, उस पे ना तो मुख्यमंत्री ने ना सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिया है। दूसरा, पिछले कल प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकारी हेलीकॉप्टर लेकर दिल्ली रवाना हुई, जो आंदोलन हो रहा था उसमें राहुल गांधी जी के पीछे खड़े थे। सरकार ये बताएगी कि बिना टूर प्रोग्राम जारी किए ये क्या खजाने की चोरी नहीं है? लोगों में ये भी चर्चा कि ये जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल होने के लिए गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई टैचियों की व्यवस्था तो नहीं होके गई है? क्योंकि देश के खिलाफ एक आंदोलन जो चला हुआ है, झूठा आंदोलन जो चला है, लोगों को गुमराह करने का आंदोलन जो चला है, उनको खुश करने के लिए तो नहीं हुआ? जिस तरीके से प्रदेश के खजाने को खाली किया गया है और वोट चोरी की जगह जो है खजाना चोरी का नारा कांग्रेस को लगाना चाहिए।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा हिमाचल में सड़क, स्वास्थ्य व रेल सेवाओं सहित आर्थिक अवसरों के विस्तार के लिए निरंतर सहयोग कर रही है केंद्र सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का किया आह्वान। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा प्रदेश में इस बार कम हुआ सेब सीजन, अभी तक केवल 1,23,00,000 पेटियां पहुंची बाजार तक। विश्व डाक दिवस के अवसर पर प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन, 15 अक्टूबर तक होंगे कई कार्यक्रम। और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर के कथित प्रयोग को लेकर उठाए सवाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर।
0: श्रोता, समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आप पहुंचे हैं। अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत।

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: शालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी,
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा
0: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

0: दोस्तों आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना नो शेयरिंग?
2: मामा
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
1: 3, 2, 1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है ऐसे।
5: Oh, no. इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
1: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी।
6: रेडी?

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो इंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे।

बीआरओ के महानिदेशक ने राज्यपाल से की भेंट। शाहपुर में 78 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर, भवन निर्माण पर 22 करोड़ और पीएमजीएसवाई के तहत 26 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। धारकंडी क्षेत्र के 4 सड़कों की डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजी, विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश। यूएई में इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए 14 अक्टूबर तक करें आवेदन। अब समाचार विस्तार से।

सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने आज लोक भवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश में वीआरओ द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं पहलों की जानकारी दी। उन्होंने चुनौतीपूर्ण भौगोलिक और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के बावजूद सड़क संपर्क बनाए रखने के लिए संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत करवाया। राज्यपाल ने प्रदेश के दूरदराज और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ बनाने में वीआरओ की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से हिमालय क्षेत्रों में सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मजबूत टिकाऊ और लचीली बुनियादी अधोसंरचना के महत्व पर बल दिया। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए शाहपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई तथा सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान केवल सिंह पठानिया ने बताया कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर है। इनमें भवन निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा नाबार्ड के तहत संचालित विकास परियोजनाएं शामिल हैं। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न भवनों के निर्माण कार्यों पर लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन कार्यों को शीघ्र पूरा कर जनता को समर्पित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि लोगों को इन सुविधाओं का दीर्घकालिक लाभ मिल सके। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा एसएमई एंटरप्राइजेस मुंबई के सहयोग से मेसर्स वर्टिव गल्फ एलएलसी संयुक्त अरब अमीरात में इलेक्ट्रीशियन फिटर हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों हेतु मासिक वेतन 1100 से 1300 यूएई दिरहम प्रति माह, ओवरटाइम और उम्मीदवारों को निःशुल्क भोजन या भोजन भत्ता, रोजगार के शर्तों के अनुसार आवास एवं परिवहन की सुविधा और नियोक्ता द्वारा वीजा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सुविधाएं, साप्ताहिक अवकाश तथा रोजगार अनुबंध और यूएई के नियमों के अनुसार अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। इन पदों के लिए 20 से 45 वर्ष की आयु के आईटीआई डिप्लोमा होल्डर पात्र होंगे। उम्मीदवार के पास अपना वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों के पास पासपोर्ट नहीं है लेकिन आवेदन के लिए पात्र हैं, लेकिन चयन होने के 7 दिनों के भीतर पासपोर्ट बनवाना अनिवार्य रहेगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। चयनित उम्मीदवारों को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 35,400 रुपए के अतिरिक्त जीएसटी व 1,500 रुपए चिकित्सा शुल्क देना होगा। किसी भी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 0189-222-4892। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों और टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन मंत्रालय टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों के लिए एक विशेष सालाना पास योजना लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोज रोज के टोल टैक्स के भारी खर्च से मुक्ति दिलाना है। नए प्रस्ताव के अनुसार टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान करके साल भर की वैधता वाला पास जारी किया जाएगा। इसके बाद वे बिना किसी अतिरिक्त दैनिक शुल्क के टोल प्लाजा से असीमित आवाजाही कर सकेंगे। इस कदम से न केवल स्थानीय निवासियों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी बल्कि टोल काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों और स्थानीय विवादों में भी कमी आएगी। एशियाई क्रिकेट परिषद ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2026 का कार्यक्रम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। ओमान में ये टूर्नामेंट 5 से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। सबकी निगाहें भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले पर थी, जिसके लिए एसीसी ने 8 नवंबर का दिन निर्धारित किया है। दोनों टीमों के बीच ओमान के ओसीए ग्राउंड में मुकाबला होगा।
टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4-4 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत के ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा यूएई और नेपाल अन्य 2 टीमें हैं। भारत अपना अभियान 6 नवंबर को नेपाल अंडर 19 के खिलाफ शुरू करेगी। ग्रुप स्तर पर सभी टीमों के बीच कुल 12 मैचों का आयोजन होगा। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें 12 नवंबर को सेमीफाइनल में भिड़ेंगी। फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार का पिक एंड चूज की नीति को अवैध करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संवर्ग में पदोन्नति वाले उच्च पद का वेतनमान उसके फीडर पद से कम या उसके बराबर नहीं हो सकता। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने शशिपाल ठाकुर और 57 अन्य स्वास्थ्य शिक्षकों की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने सरकार के 30 जनवरी 2016 को उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, जिसके तहत स्वास्थ्य शिक्षकों को निचले पद के बराबर 4200 का ग्रेड पे दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब तय समय सीमा बीतने के बाद अपील करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने यूनिफाइड पब्लिक सर्विस गारंटी पोर्टल पर ऑटो अपील सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत यदि किसी अधिसूचित ऑनलाइन सेवा का निर्धारित समय में निपटारा नहीं होता है तो मामला अपने आप संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। ये व्यवस्था स्टेट कोलैबोरेशन इनिशिएटिव के तहत शुरू की गई है। शुरुआती चरण में 4 विभागों की ऑनलाइन सेवाओं को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के नौ दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: शालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी।
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा चल,
0: लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
5: 3, 2, 1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है।
6: ऐसे यार, इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
5: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उस रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सो वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.92 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने।

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे काका भी है।
1: अच्छा
0: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना, वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं आ

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
5: 3, 2, 1 करूंगा। हाँ। तू मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
6: Oh, no. इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
5: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं जाता हूं जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती है ना?
0: नहीं
1: थोड़ा भी नहीं,
0: नहीं
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं।

पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।